0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: वैसे आपने सोच लिया था कि ऑफिस में रिजाइन कर दोगे, बट द डे यू वर अबाउट टू पुट इन योर पेपर्स, एक खूबसूरत लड़की आ गई एंड शी वाज सपोज्ड टू बी वर्किंग अंडर यू, नॉट लिटरली, और आपने अपने पेपर्स नहीं डाले. किस तरह के इंसानों और ये सीक्रेट आप किसे बताओगे?
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: द राइट आंसर इज मुझे बताओगे. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हाई मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी,
2: कैसे हो आप?
4: मैं बहुत अच्छा हूँ.
2: आप ना जरूरत, मुझे पता था आप ये कहने वाले हो. मैं कहने ही वाली थी कि आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि जब मैंने आपसे टेक्स्ट भी किया ना इंस्टाग्राम पर, तो मैं समझ गई थी कि आप काफी छिछोरे किस्म के इंसान हो. नहीं, आपको नहीं लगता?
4: छिछोरा तो नहीं, हाँ, मतलब जिंदगी थोड़ी रंगीन सी रही है मेरी.
2: ओह रियली? नाउ
4: सो एक्चुअली ये हुआ था ना कि लाइक मैंने जो बताया ना कि कॉलेज के बाद भी, मतलब कॉलेज के दौरान और उसके बाद भी काफी गर्लफ्रेंड्स वगैरह रही है मेरी, तो मैं था रिलेशनशिप में कई लोगों के साथ. तो घर पे भी थोड़ा सा ये हुआ कि जब शादी वगैरह की बात चलने लगी ना, थोड़ा सा कि सीरियस हो गया माहौल कि यार शादी वादी करनी है, क्या सोचा है क्या नहीं. तो मेरा ये हमेशा था कि यार शादी तो एटलीस्ट घर वालों की, यू नो, उनकी मंजूरी से,
2: कि इधर उधर कहीं पर भी हुआ हो, कहीं पे भी मुंह मार लो, अल्टीमेटली तो संस्कारी बालक बनना ही है.
4: हाँ, एक्चुअली ये मेरे, हाँ, मेरे घर का एक्चुअली ऐसे सीन था ना कि थोड़ा ज्यादा ही, मतलब कि संस्कारी टाइप के है ना. तो मैंने सोचा ठीक है, उनकी मर्जी से कर लेते हैं. तो उन्होंने लड़की की फोटो दिखाई थी मेरे को, और वो सब बताऊ ना आपको, बहुत सुंदर थी यार. मतलब अरेंज मैरिज में ऐसा मिलना ना बहुत किस्मत वालों का ही खेल है. तो मेरे को ऐसे मिल गई थी वो, तो मैंने कहा ठीक है हाँ कर देते हैं. तो हाँ कर दिया, हमारी बातचीत भी हुई. और हुआ ये कि बातचीत करने के 2 महीने बाद ही रोका, मतलब ऐसा फिक्स हुआ कि भैया अब एंगेजमेंट या रोका कुछ कर लेते हैं. तो सब, मतलब सारे मेहमान आए हुए, सब कुछ सेट था. हम, मतलब मैंने भी वहां पे उससे मिला, उससे बातचीत करी. रोके के इवेंट में हुआ ये कि, मतलब मुझे ना आवाज सुनाई दी पीछे से, और वो आवाज थी मेरी एक्स की.
2: फिर
4: अब मैं ये सोचने लग गया कि भाई, मतलब जितने भी जिंदगी में जितने भी ये करे ना मैंने क्लेश, अब लग रहा है आज इसका वक्त आ गया, मेरा एंड हो गया, मेरा पाप का घड़ा भर चुका लग रहा है.
2: फिर
4: तो मैं क्या कैसे रिएक्ट करूं, मैं समझ ही नहीं आ रहा. और वो मेरी तरफ ही आई, मैंने कहा ले गया, और आके मुझे कह रही जी जू. मैंने कहा हाँ, तो मेरी जो मतलब होने वाली पत्नी है ना, वो कह रही साली से तो मिलो अपनी. मैंने कहा ये साली है? मतलब कि जो उसकी जो छोटी बहन है ना, 1 महीने पहले ही, मतलब जब समझ रहे आप हंस रहे हो, लेकिन यार मेरी सिचुएशन मेरी बहुत फट गई थी यार उस टाइम पर.
2: आपने थोड़ा ज्यादा लिटरली नहीं ले लिया साली आधी घर वाली? आपके केस में तो मैं आधी भी नहीं बोल सकती हूँ इसको.
4: आधी नहीं, वो तो थोड़ी ज्यादा ही होगी.
2: ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, समझ गए हम, ऐसे हर चीज बोलनी थोड़ी होती है. आपको जिंदगी में देखो, मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, ये आप ही के पापों का घर है, दैट इज राइट. लेकिन मैं आपको रोशिफाई कर सकती हूँ, चाहेंगे आप?
4: जी बिल्कुल, मेरे थोड़े से पाप कम हो जाएंगे.
2: ये लीजिए जनाब. Dude, I feel really sorry for you. मतलब लोगों की किस्मत मैंने देखा है बहुत खराब होते हुए, बट आपका केस तो कुछ ज्यादा ही खराब है यार. It's all in the family, यार होता है ऐसे, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं.
4: ठीक है, देखते हैं आगे क्या करना है.
2: All the best to you, mystery caller. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई bhasar.com है, why don't you hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

रीन, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीन, तूने यू तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है। टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे, बादशाह के गाने सारे याद है।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आज का वर्ड ऑफ द डे है पूजा, जो अगर आपकी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है लेकिन आप इस इंसान को टेक्स्ट करते हुए पाए गए या उसे फोन करते हुए पाए गए बाय योर गर्लफ्रेंड, जिसका नाम कनिका, रिद्धि, सिद्धि कुछ भी हो सकता है लेकिन पूजा नहीं, तो आपको ऐसी बीटी मिलने वाली है कि उसके बाद आपको मेरी डेफो जरूरत पड़ेगी. एंड माई सजेशन टू यू इज, अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अपनी आंखें, दिमाग और दिल इधर उधर ना भटकाएं तो आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है. लेकिन दिल है कि मानता नहीं, व्हाई डोंट यू हिट मी अप, आई विल क्योर यू ऑफ योर इनफिडेलिटी प्रॉब्लम्स. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड डार्लिंग, डू व्हाट यू हैव टू डू, इवन दो मेरा नाम पूजा नहीं है. हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: तुम तो यहाँ नहीं हो, लेकिन जब मुड़कर देखता हूँ तो तुम्हें हमेशा अपने साथ ही पाता हूँ।
3: रोशी के
4: लेटर बॉक्स से।
2: मैं रोज आपसे ये कहती हूँ कि अगर आपकी जिंदगी में किसी ने आपके लिए चिट्ठी लिखी, अगर आपने किसी के लिए चिट्ठी लिखी, तो वाई डोंट यू शेयर इट विद मी। क्योंकि खतों का एक ऐसा सफरनामा शुरू किया है हमने जो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी अरसे तक कंटिन्यू करेगा। आपकी चिट्ठियाँ कभी खत्म ही नहीं होती हैं। तो मेरे पास अभी जो चिट्ठी आई थी ऑन इंस्टाग्राम वो इतनी खूबसूरत है। इट सेज, मेरी प्यारी पायल, तुम यहाँ नहीं हो, लेकिन जब मैं मुड़कर देखता हूँ तो तुम्हें यहीं पाता हूँ। बहुत अरसा हो गया कि हमारा ब्रेकअप हुए और तुमने शादी कर ली है, सुना है कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। इस दौरान मैं लुखा आफ्ताब से समझदार आफ्ताब बन गया हूँ। मैंने एक ट्रैवल एंड टूर की कंपनी शुरू की है। तुम तो नहीं थी, लेकिन तुम्हारी याद में ही ये कंपनी शुरू की। याद है हमने कितने प्लान्स बनाए थे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे नाम पर एक ट्रैवल कंपनी खोलता हूँ। जानती हो इस ट्रैवल कंपनी का नाम क्या है? एक्चुअली नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, उसका नाम है पायल टूर्स एंड ट्रैवल्स। और तुम्हें पता है कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत सारे लोगों को टूर्स पर लेकर जाता हूँ। और जब भी कहीं जाता हूँ, कोई अजीब सी चीज़ देखता हूँ, कोई अनोखी चीज़ देखता हूँ, कोई प्यारी चीज़ देखता हूँ जिसे देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है, मैं एक फ़ोटोग्राफ ले लेता हूँ और उस फोटोग्राफ को एक फाइल में डालता हूँ जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है। इस तरह मुझे लगता है कि अगर तुम नहीं हो तो भी तुम हमेशा मेरे ही साथ हो। किसी दिन अगर मिलना हुआ ना पायल, तो ये फाइल मैं तुम्हें दे दूंगा। इसमें जितनी तस्वीरें हैं वो सिर्फ जगहों की तस्वीरें नहीं हैं, वो उन सब चीज़ों की तस्वीरें हैं।

0: Energy.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. Na viva la burka. Energy burka.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आपसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या वो मांगे?
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट्स पटाक। हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आज हम कुछ एक्साइटिंग और डिफरेंट करने वाले हैं. देर इज अ ब्यूटिफुल बुक कॉल्ड मदिरा जो ट्रेस करती है इंडिया की बहुत ही इंटरेस्टिंग जो लोकली मेड कॉकटेल्स हैं या लोकल ट्रेडिशंस हैं, जैसे राइस वाइन एट्सेट्रा. उन सबको डॉक्यूमेंट किया गया है इस खूबसूरत किताब में कॉल्ड मदिरा, विच इज रिटन बाय पराग शास्त्री. एंड ऑन द मिर्ची हॉटलाइन राइट नाउ विद मी इज द ऑथर ऑफ दिस अमेजिंग बुक. वेलकम टू द मिर्ची हॉटलाइन, पराग.
3: Hi, Roshi.
2: How are you?
3: Very, very good. Thanks for having me.
2: It's a real pleasure.
3: Same here. In fact, definitely kehna chahunga that this is one of the safest interviews, right? Jo maine kabhi bhi diya ho, right? They're trying to impress people with Nibu Pani, right? And Aamka Achar flavors.
2: We're going to get into that as well. लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर मान लीजिए मेरी तरह कोई ऐसे कपल हैं जो जैसे स्पाइस रूट था, यू नो, विच वॉज ट्रेस्ड अक्रॉस एशिया, वैसे ही अगर किसी को इंडिया में मदिरा रूट ट्रेस करना हो, जैसे कि अरुणाचल की राइस वाइन्स हैं या कोकम और महुआ के फ्लावर्स की बनी हुई एक लोकली प्रोड्यूस ड्रिंक है, तो ये मदिरा रूट क्या होगा? मतलब इस कपल को कहाँ कहाँ जाना चाहिए इन इंडिया टू डिस्कवर लोकल वैरायटीज ऑफ इंटरेस्टिंग इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स?
3: इंटरेस्टिंग, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू हैव, राइट. असल आप हिंदुस्तान का कोई भी कोना नहीं छोड़ सकते इस सवाल के जवाब में. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कोई एक रूट है जो हम फॉलो करना चाहेंगे या कर सकते हैं, राइट, आई थिंक द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया बहुत इंटरेस्टिंग है. आई थिंक महुआ इज द हार्ट एंड सोल, राइट, फॉर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, टू सम एक्सटेंट ओडिशा, राइट. ये एरिया महुआ इज लाइक द कल्चर, राइट, द लोकल कल्चर. Next stop would be ideally Goa, right? The flavors that come out of that coastal belt like kokum, right? Your coastal citrus, right? The local flavored cashew.
2: Cashew nut ki feeli bhi banti hai na, exactly.
3: That's the next stop that I would, main definitely recommend karunga logon ko, right? Then from there you move to Coorg.
2: Okay.
3: Right, there are a lot of interesting stuff locally there, right? Wahan spices hain, wahan coffee hai, right, which allows you to experience the local flavor and the type of local brews jo I think amazing hain, right? And then from there you take a flight up north, then I think in the hills of Himachal, Uttarakhand, I think amazing stuff happens out there, right? Like a local drink there, right? If I have to call out one, is made out of rice again, right? Very, very good locally, right? And then northeast is like treasure, right? You can't say anything. But say for example today, right? If somebody is looking at a possible shortcut, right, to be able to do that, there is a boutique place called the Good Craft.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अगर आप किसी पर चीट कर रहे हो तो एटलीस्ट हैव द डीसेंसी ऑफ नॉट गेटिंग कॉट, बिकॉज फिर सारे पीपल इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ चीटिंग एंड अप लुकिंग एक्सट्रीमली स्टूपिड. जैसा रिसेंटली अभी मेरी सोसाइटी में हुआ, वन क्यूट गाय वॉज कॉट चीटिंग ऑन हिज वेरी हॉट गर्लफ्रेंड. और उसके बाद अब इतनी भसड़ है कि अगर सोसाइटी के जिम में जाओ, स्विमिंग पूल में जाओ, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट जस्ट दैट. टॉकिंग ऑफ चीटिंग, क्या आपको पता है दैट देर आर थ्री टॉप जोडियक साइंस दैट आर मोस्ट लाइकली टू चीट ऑन यू. नंबर वन पे पाइसीज है. आई नो पाइसीज आर सपोज टू बी सुपर रोमांटिक, बट वो ऑल्सो मूडी होते हैं. तो अगर एक पर्टिकुलर मोमेंट के मूड में उनका किसी पे दिल आ गया, टू बैड फॉर यू सिस्टर. नंबर टू पर है जेमिनाइज, बिकॉज दे नीड सो मच अटेंशन ऑल द टाइम. नंबर तीन पर है लिब्रंस. एंड अगर आप जानना चाहते हो इफ योर पार्टनर और उनके जोडियाक साइन पर बेस्ड इफ दे आर चीटिंग ऑन यू आर नॉट, व्हाई डोंट यू सेंड मी अ डीएम इंस्टा पर या एफबी पर. आई बी हैप्पी टू हेल्प यू पर्सनली. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप बेबी, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Ca.
1: Merge.
2: R-O-C-H-I-E. Roshi, Roshi.
1: Mirchi Roshi.
3: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
4: Bubbly? ये कैसा नाम है? बबली क्या नाम होता है एज अ पेट नेम फॉर समवन दैट यू रियली लाइक, यू आर अट्रैक्टेड टू, जिसे आप डेट करना चाहते हो इन द नियर फ्यूचर. सो आई मेट दिस गाय ऑन अ डेटिंग ऐप एंड ही वाज लाइक, तू इतनी स्वीट है, इतनी सारी बातें करती है, इतनी प्यारी बातें करती है, क्या मैं तुझे प्यार से बबली बुला सकता हूँ? आई एम लाइक, क्या मैं तुझे प्यार से बंटी बुला सकती हूँ? गधे, लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ निकनेम इज दैट? कोई मुझे कहे ग्लिटर क्वीन, कोई मुझे कहे कपकेक, कोई मुझे कहे जूजूब, कोई मुझे कहे माय लिटिल बेरी, मुझे वो सब समझ में आता है. बबली कैसा नाम है? मुझे नहीं बनना है तुम्हारे लिए बबली कडली, ऐसे नाम मुझे ना पसंद है. एंड दे फॉर मी आर अ डील ब्रेकर. मेरे लिए इतनी अजीबो गरीब चीजें डील ब्रेकर्स होती हैं, दैट इज नॉट इवन फनी, बट दैट्स व्हाट मेक्स मी मी. अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में, एक रिलेशनशिप में, व्हाट आर द डील ब्रेकर्स दैट कंप्लीटली मेक श्योर कि आप इस बंदे से कभी फिर से बात नहीं करोगे? वट एवर योर आंसर इज, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड नो इट इज नॉट बबली. सो व्हाइल यू फाइंड मी ऑन योर सोशल्स, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Bank support.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया?
2: सर I'm so sorry, पूरा बताइए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है,
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: अब
2: तो फंस गए सर.
1: हेलो.
2: सर आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
2: जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: वैसे आपने सोच लिया था कि ऑफिस में रिजाइन कर दोगे, बट द डे यू वर अबाउट टू पुट इन योर पेपर्स, एक खूबसूरत लड़की आ गई एंड शी वाज सपोज्ड टू बी वर्किंग अंडर यू, नॉट लिटरली, और आपने अपने पेपर्स नहीं डाले. किस तरह के इंसानों, और ये सीक्रेट आप किसे बताओगे?
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: द राइट आंसर इज मुझे बताओगे. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी,
2: कैसे हो आप?
4: मैं बहुत अच्छा हूँ.
2: आप ना जरूरत, मुझे पता था आप ये कहने वाले हो. मैं कहने ही वाली थी कि आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि जब मैंने आपसे टेक्स्ट भी किया ना इंस्टाग्राम पर, तो मैं समझ गई थी कि आप काफी छिछोरे किस्म के इंसान हो. नहीं, आपको नहीं लगता?
4: छिछोरा तो नहीं, हाँ, मतलब जिंदगी थोड़ी रंगीन सी रही है मेरी.
2: ओह रियली? नाउ
4: सो एक्चुअली ये हुआ था ना कि लाइक मैंने जो बताया ना कि कॉलेज के बाद भी, मतलब कॉलेज के दौरान और उसके बाद भी काफी गर्लफ्रेंड्स वगैरह रही है मेरी, तो मैं था रिलेशनशिप में कई लोगों के साथ. तो घर पे भी थोड़ा सा ये हुआ कि जब शादी वगैरह की बात चलने लगी ना, थोड़ा सा कि सीरियस हो गया माहौल, क्या शादी वादी करनी है, क्या सोचा है क्या नहीं. तो मेरा ये हमेशा था कि यार शादी तो एटलीस्ट घर वालों की, यू नो, उनकी मंजूरी से,
2: कि इधर उधर कहीं पर भी हो आओ, कहीं पे भी मुंह मार लो, अल्टीमेटली तो संस्कारी बालक बनना ही है.
4: हाँ, एक्चुअली ये मेरे, हाँ, मेरे घर का एक्चुअली ऐसे सीन था ना कि थोड़ा ज्यादा ही, मतलब कि संस्कारी टाइप के है ना.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब
3: मिर्ची का।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर तेरे यार की। अगर ऐसी बात है तो हो सकता है कि आपका यार आपसे शायद उतना प्यार नहीं करता जितना आप उससे, और अगर ऐसी बात सच है एंड यू हैव रियलाइज दैट, देन मे आई सजेस्ट समथिंग। वो जो 50 किलो भर का प्यार है ना आपके अंदर दूसरे इंसानों के लिए, शायद इट इज़ टाइम टू टर्न दैट लव टूवर्ड्स योर सेल्फ। क्योंकि पूरी ज़िंदगी में अगर एक इंसान है जो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा टिल दी एंड ऑफ टाइम, वो आप खुद हो। और अगर आपको मुश्किल लग रहा है दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लव, क्योंकि ये कहना आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल, व्हाई डोंट यू सेंड मी योर नंबर एंड वी विल गेट टॉकिंग। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। और एक बात बोलूँ, ये मैं बोलती आई हूँ और बोलती रहूँगी ढीठों की तरह, कि जिसके पास लव है ना उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोड्स।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला
3: है। वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: यार
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया, रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है। अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: मैं ये तो हम जानते हैं कि किशोर कुमार ने म्यूजिक की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो अपने ग्रोइंग अप इयर्स में जब वो संगीत सीखना चाहते थे तो क्यों नहीं सीख पाए? सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था और कैसे शेयर किया था।
1: चल के तुझे मैं

0: लेकिन हकीकत यह है कि जवानी में प्यार कम मिलता है और मुसीबतें ज्यादा। वो ऐसे कि मेरी जवानी ने चाहा कि मैं बहुत बड़ा क्लासिकल सिंगर यानी शास्त्रीय गायक बनूं, मगर चूंकि मेरे पिताजी वकील थे और उनकी कचहरी में संगीत का कोई स्थान नहीं था, इसीलिए मैं संगीत की कोई शिक्षा नहीं ले पाया।
1: भाई बिना संगीत की शिक्षा के ये ऐसे तोप थे, शिक्षा ले लेते तो पता नहीं क्या ही ये तोप बड़ूम बड़ाम कर देती। और पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Rani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iskabana, puskabana, sakabana.
3: Rambala.
2: Murga, murga. Naviyat wala murga.
3: Mirchi, murga.
4: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
5: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
4: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
5: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
4: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
5: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
4: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
5: बोलो।
4: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
5: कौन सा?
4: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
5: अच्छा।
4: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
5: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
4: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
5: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
4: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
5: कुकर? हाँ कुकर तो है।
4: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
5: अच्छा
4: 4 लीटर में आप, मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
5: सोडा,
4: हाँ खाने वाला सोडा। नहीं नहीं नहीं, लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
5: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
4: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
5: मतलब उसको पकाऊं?
4: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
5: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
4: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
5: नहीं नहीं कोई, मैं सर्विस में लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
4: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
5: चल जाएगी?
4: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
5: अबे कौन बोल रहा है तू?
4: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
5: यार यार। ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
6: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: Rani Jeans with Charu, only.

0: ये तो हमको पता ही नहीं था।
1: मिर्ची, सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये बात कि बॉबी फिल्म, जो ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया की डेब्यू फिल्म थी, उसमें मेन रोल बॉबी के रोल के लिए नीतू सिंह का भी ऑडिशन हुआ था, वो सिलेक्ट नहीं हुई, डिंपल कपाड़िया सिलेक्ट हो गई। भाई वैसे नीतू जी एज अ चाइल्ड एक्टर काम करती थी, बट ये बड़े होने के बाद वाला जो डेब्यू होता है वो फ्यूचर हस्बैंड के साथ तो नहीं हो पाया, लेकिन उसी साल फ्यूचर जेठ जी के साथ इनका फिल्मी डेब्यू हो गया 1973 की ही फिल्म रिक्शा वाला में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया की जोड़ी वाला एक और गाना सुन लेते हैं। काफी सेंसुअस हॉट गाना है ये। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

आपने जॉनी मेरा नाम फिल्म का वो गाना देखा है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इट्स अ फन सॉन्ग जहाँ पे देवानंद हेमा मालिनी को सॉर्ट ऑफ टीज कर रहे हैं, उनके घर में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग खिड़कियों के द्वारा। उस घर में इतनी खिड़कियां दिखाई गई है भाई, इतनी खिड़कियां हैं, ऐसा सोच के लगता है कि ए वुमन लाइक हेमा मालिनी इज लिविंग देयर, इट इज सो अनसेफ। हालांकि खिड़कियां बंद करने के तरीके हैं, विंडो ब्लाइंड्स हैं, कर्टन्स हैं, खिड़की पूरी तरह से बंद हो जाए ऐसा भी तरीका है, लेकिन इतनी सारी खिड़कियां, इतनी सारी छिपकलियां घुस आती होंगी गर्मियों में, चूहे तक घुस सकते हैं। अरे चूहे क्या, डॉग्स कैट्स कुछ भी आ सकता है, कबूतर, इतनी खुली खुली खिड़कियां हैं, वो मेंटेन करनी कितनी मुश्किल हो, और रात को सोने से पहले कितनी खिड़कियां बंद करोगे। अगली बार वो गाना देखे तो ध्यान से देखे और काउंट भी करना कितनी खिड़कियां हैं, मैं भी काउंट करूंगी अगली बार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप पूछ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

So the other day I watched this film called Jhooti and I fell in love with Rekha once again. मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये ना मिड 80s की फिल्म है जब रेखा अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रख रही थी, तो वो बहुत फिट लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। मुझे तो उनकी ड्रेसिंग सेंस भी इस फिल्म में बहुत अच्छी लगी। तो इसमें ना उनको घर में सबसे छोटी दिखाया गया है, वो बहुत पैम्पर्ड भी है और उनको झूठ बोलने की आदत है। इस फिल्म में अमोल पालेकर, राज बब्बर ये लोग हैं। और ऐसी क्यूट हार्ट वार्मिंग सी फिल्में किनकी होती हैं? ऋषिकेश मुखर्जी की। अगर आपने फिल्म नहीं देखी प्लीज देखें। और अभी हम गाना सुनेंगे उस फिल्म का जिसे बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और उसमें रेखा को उनकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। खूबसूरत फिल्म का गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए।

घटित था लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंग था खेलत भुज मेलत लपट जपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी

0: श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पुरानी जींस चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

भाई ज्यादातर लोग सुप्रिया पाठक जी को खिचड़ी टीवी शो में उनके हंसा के रोल के लिए याद रखते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी वही कि मेरा नाम हंसा और प्रफुल व्हाट इज एंड माय फेवरेट, मैं तो थक गई बाई जाब। नो वंडर दिस परफॉर्मेंस, दिस रोल इज माइंड ब्लोइंग। लेकिन सुप्रिया पाठक जी ने इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दी हैं इन वैरायटी ऑफ रोल्स। आपको पता है ना, ये फेमस एक्ट्रेस दीना पाठक जी की डॉटर हैं और इनके फादर बलदेव पाठक यूज्ड टू मेक ड्रेसेस फॉर एक्टर्स लाइक राजेश खन्ना एंड दिलीप कुमार। एनीवे, कमिंग बैक टू हर परफॉर्मेंसेस, इनको इनकी पहली फिल्म 1981 की कलयुग के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और उसके बाद की जो इनकी फिल्म थी उसके लिए भी उनको यही अवार्ड मिला था। उसी फिल्म का हम यहाँ गाना सुनेंगे, फिल्म का नाम बाजार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nafiyat wala murga. Mirchi, murga.
1: Hello.
2: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
1: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
2: होल्ड कर रहा हूँ।
1: हाँ जी, हेलो।
2: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
1: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
2: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
1: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
2: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
1: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
2: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
1: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
2: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
1: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
2: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
2: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
1: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
2: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
1: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
2: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
1: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
2: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
1: क्या
2: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
3: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
1: नहीं।
2: दोबारा कॉल करेंगे, आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

1975 की फिल्म जख्मी का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है ये फिल्म ताहिर हुसैन साहब ने प्रोड्यूस की थी, जो आमिर खान के फादर थे। और आमिर खान की दो फिल्मों का नाम पहले जख्मी होने वाला था, एक तो उनकी 1998 की जो गुलाम फिल्म थी वो, और फिर 2012 की तलाश, लेकिन किसी वजह से फिर जख्मी नाम नहीं रखा गया। ऐसे नाम में क्या रखा है, कहा था विलियम शेक्सपियर ने, गुलाब को आप किसी भी नाम से पुकार लें, गुलाब की खुशबू तो वैसी ही रहेगी ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। यहाँ पे नाम में काफी कुछ रखा है। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

1976 का मास्टरपीस सॉन्ग। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और ये गाना है कभी कभी फिल्म का टाइटल ट्रैक। जी हाँ बहनों भाइयों, उस साल गीत माला में ये गीत पायदान नंबर एक पर था। इस गाने के लिए खयाम साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, साहिर साहब को बेस्ट लिरिसिस्ट और मुकेश साहब को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अच्छा, खयाम साहब ने ना ये गाना, इस गाने की जो ट्यून है, ये 50s की किसी फिल्म के लिए कंपोज की थी। वो गाना रिकॉर्ड भी हुआ था, गीता दत्त एंड सुधा मल्होत्रा उन्होंने ये गाना गाया था, लेकिन किसी वजह से वो फिल्म बन नहीं पाई या रिलीज नहीं हुई, तो वो गाना खयाम साहब के पास पड़ा हुआ था। तो जब ये कभी कभी फिल्म का म्यूजिक बन रहा था, उन्होंने यश चोपड़ा को ये ट्यून सुनाई, चोपड़ा साहब को पसंद आ गई, साहिर साहब के लिरिसिस्ट इस पे फिट कर दिए गए, मुकेश और लता मंगेशकर ने इसे गाया और ये मास्टरपीस बन गया। तो सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची

0: आएंगे।
1: यार इस गाने को इसका वीडियो देखते हुए सुन लो ना, तो ये सैड सॉन्ग से कॉमेडी सॉन्ग बन जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। गैम्बलर फिल्म का ये गाना जिसमें देवानंद साहब ने ऐसी मूंछें लगा रखी हैं जो बहुत फनी लगती हैं। वैसे देखो देवानंद साहब बहुत बोल्ड थे, बहुत स्टाइलिश थे, अपने लुक्स के साथ वो इतना एक्सपेरिमेंट करते थे, रिस्क लेते थे। लेकिन ये वाली मूंछें ना ये बड़ी शॉर्टी लग रही है, वो जो नाटक नौटंकी थिएटर वाली मूंछें नहीं होती बस ऐसे चिपका दिए हैं वो वैसी लग रही है। चलो ये मुच्छी वाला एपिसोड साइड रखें, तो अदरवाइज देवानंद साहब के स्कार्फ्स, उनकी जैकेट्स, उनके स्वेटर्स, इवन इन ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स अगर आप देखें उनका स्टाइल ऐसे नोटिसेबल होता था। और एक और स्टाइल आइकॉन जो कि जीते जागते स्टाइल एंड फैशन की मूरत थे, फिरोज खान साहब, उनका गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

भाई एक शायर हैं हसन कमाल साहब, उनकी मैं गजल पढ़ रही थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो कहते हैं, सर उठाकर न कभी देखा कहाँ बैठे थे, गिरती दीवार का साया था जहाँ बैठे थे। सब थे मसरूफ अंधेरों की खरीदारी में, हम सजाए हुए शमाओं की दुकान बैठे थे। यही शोहरत का सबब होंगे ये मालूम न था, हम छुपाए हुए जख्मों के निशान बैठे थे। लोग तो बुझते चिरागों के धुएं से खुश थे, हम ही बेकार जलाए हुए जहां बैठे थे। मैं कदा शराब खाना, मैं कदा और भी तन्हाई का सामान निकला, हम की तन्हाई से तंग आके यहाँ बैठे थे। हसन कमाल साहब ने बहुत सुंदर फिल्मी गीत और गजल भी लिखे हैं, तो उनकी लिखी ये खूबसूरत गजल सुन लेते हैं एतबार फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारु ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची मिर्ची
1: हेलो हेलो
2: सर मेरे गुड इवनिंग मैं थैंक्स फॉर बोल रहा
1: हूँ हाँ बोलिए
2: सर आई एम सो सॉरी सर बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का
1: बनवाया था भैया क्या हो गया नहीं क्या बात
2: है सर आई एम सो सॉरी पूरा बता
1: क्या करो भैया कहाँ
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को कहीं पे यूज किया आपने कुछ परचेजिंग करी उससे
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो क्या कर रहे हो
2: आई एम सो सॉरी सर ऐसे कभी कभी हो जाता है सर सर उससे कुछ परचेज किया आपने
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया हेलो
2: आई एम सो सॉरी सर सर मैं आपसे कहना चाह रहा था सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था सर बस फाइनली ये बता दीजिए कुछ परचेज किया आपने उससे कुछ खरीदा था
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा भैया पागल है क्या
2: आई एम सो सॉरी सर आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे
1: पागल पागल है
2: अब तो देने पड़ेंगे सर
1: हेलो
2: अब तो देने अब तो फंस गए देने पड़ेंगे अब तो फंस गए देने पड़ेंगे
1: कौन बोल रहा है विपिन
2: नहीं सर तो बैंक में आना पड़ेगा बैंक का खाना खाना पड़ेगा बैंक के पैसे देने पड़ेंगे
1: पागल
2: तो फंस गए सर
1: हेलो
3: सर आप फोन मत काटिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ मैंने एक मजाक किया छोटा सा मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था आपका मुर्गा बन गया
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई देने पड़ेंगे
3: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे आप अब भी नहीं समझे मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ
1: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं हाँ
3: जी अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर

0: आपको पता है 80s में अमृता सिंह को मजाक में मर्द सिंह भी कहा जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये क्या सीन था, कौन उन्हें ऐसे बुलाता था, किसने उन्हें ऐसा नाम दिया, सुनिए पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: ये मर्द सिंह का जो टाइटल मुझे दिया गया ये मैंने नहीं दिया, ये एक बार टिंपू कपूर ने मुझे दिया था। वो मजाक में मैंने उसे कुछ नामर्द कह दिया था, तो उसका रिटेलिएशन था कि तुम तो मर्द सिंह हो, फिर ऐसा कुछ था, एक मजाक सा हो गया था और वो एक ऐसी इमेज रह गई थी कि जो रह गई।
0: चिंपू कपूर यानी कि राजीव कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर के सबसे छोटे भाई, इन लोगों ने 80s में आई थिंक एक दो फिल्मों में साथ में काम किया था। चलिए फिलहाल यहाँ गाना सुनते हैं जो अमृता सिंह और राज बब्बर पे पिक्चराइज्ड है, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Rani Jeans with Charu, only on Mirchi. ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस में से एक थी स्मिता पाटिल जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको ज्यादातर उनकी 8 फिल्म्स के लिए जाना जाता है जिसमें उन्होंने बहुत ही बोल्ड वुमेन सेंट्रिक रोल्स प्ले किए। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बार क्या शेयर किया था।
1: मेरे भाग्य की बात है कि जब से मैंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया, मैंने अच्छी फिल्में की हैं। अच्छी फिल्मों से मेरा मतलब ये है कि उसमें जो स्त्रियों के रोल मैंने किए थे, वो औरतें हिंदुस्तान की ऐसी औरतें थी जिनके बारे में जो सच है वो इन फिल्मों में कहा गया था, जो रूरल बैकग्राउंड की हो या अर्बन बैकग्राउंड्स की हो, जैसे भूमिका थी, जैसे मंथन थी, जिसमें हिंदुस्तान की जो सिर्फ सफरिंग औरत ही नहीं लेकिन उसका जो इनर स्ट्रेंथ है, जो उसकी कष्ट करने की जो ताकत है या परिस्थितियों से झगड़ने का जो उसका एक जुनून है, वो सब बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया था।
0: वेल, उन्होंने कमर्शियल फिल्मों में भी काम किया है, याद है नमक हलाल, शक्ति, ऐसी फिल्में। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

लिरिसिस्ट इंदिवर साहब का असली नाम श्यामलाल बाबू राय था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये झांसी के थे और 50s से लेकर 90s तक उन्होंने बहुत अमेजिंग गाने लिखे हैं। इनका पहला जो एक गाना बहुत हिट हुआ था वो था 1951 की फिल्म मल्हार का, याद है आपको वो गाना, बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम। और यहाँ पर इंदिवर साहब का ही लिखा हुआ एक और ब्यूटीफुल गाना हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Burga, burga. La vida para la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है.
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है.
3: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st floor. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
2: मेरा सनसाइन कैंसर है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला.
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है.
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
2: बी पॉजिटिव. दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा. और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो.
3: वही तो मैं आपको. अरे मैडम,
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? नहीं तो मैं. अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा.
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा. आपका मुर्गा बन गया रेडियो मिर्ची पे. आप दिल्ली सुन रही है. अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं.
3: दोबारा कॉल करेंगे. आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं. मैं अभी आपको कॉल बैक.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।
1: हिट गाना।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: टक टक

0: Mirchu. Iskabana, uskabana, sakabana. Gambana. Murga, murga. Murga. Navid wala murga. Mirchi murga.
1: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: अच्छा अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
1: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4 हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा है तू?
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे मजाक कर रहा था।
2: अरे यार जरा ये भी बता दो कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: été.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: रिश्तों में प्रॉब्लम पर नहीं समझ पर फोकस करना क्यों जरूरी होता है, आइए समझते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: गुड मॉर्निंग सिस्टर, कैसी हैं आप?
5: गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे, आप कैसे हैं?
4: बहुत अच्छा। वीकेंड कैसा रहा आपका?
5: वीकेंड वॉज गुड, नॉट वेरी हेक्टिक।
4: सिस्टर, मुझे जैसा आप जानती हैं फिल्में देखने का बहुत शौक है, तो मॉनसून वेडिंग मेरी बहुत प्रिय फिल्म है, और उसमें रजत कपूर जो हैं वो एक तेज अंकल का किरदार निभाते हैं जो बहुत ही शोषण करते हैं, बहुत दुर्व्यवहार करते हैं एक्सेट्रा, और अंत में नसरुद्दीन शाह का जो कैरेक्टर है वो उनसे भिड़ते हैं और सामना करते हैं, जिससे जो है ये होता है कि परिवार जो है वो टूट जाता है। और मेरे मन में ये सवाल है, कई बार इंडियन फैमिलीज में ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन हम क्या है फैमिली को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, उसी पे पूरा फोकस होता है, तो गलत फहमी हो, दुर्व्यवहार हो, शोषण हो, कटुता हो, ये ऐसा क्यों है कि रिश्तों को हम किसी भी कीमत पर कायम रखना चाहते हैं, फैमिली को एक साथ रखना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना चाहते?
5: ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कम होती है, और हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे, वैलिडेट करे, रिस्पेक्ट करे। वो इतना ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी जो गलत चीज है हम उसका भी सहन करते हैं।
4: जी,
5: सहन करना अच्छा है, टॉलरेंस अपने आप में एक पावर है, लेकिन कई चीजों को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। जैसे फिजिकल अब्यूज है या डोमेस्टिक वायलेंस है, या आपको कोई अनएथिकल होने के लिए कहता है, वर्क प्लेस पर आपको कोई गलत करने के लिए कहता है, वहां पर हमें उस सिचुएशन का सामना करना होता है।
4: जी,
5: कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है, उसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बार किसी चीज का सामना करना होता है लेकिन हम सहन करते हैं, वो गलत है, और वो इसीलिए क्योंकि हमें वैलिडेशन चाहिए या हम चाहते हैं कि समाज में हमारी एक इज्जत बनी रहे, उसके लिए कभी कभी हम अपनी इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या हम अनजाने में गलत चीजों को अपनी एनर्जी दे रहे हैं? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये हमने हाईवे फिल्म में भी देखा था, जहाँ पे आलिया भट्ट को ना अपनी पुराने बचपन में हुए जो शोषण होते हैं उसके बारे में याद आती है, तो फिर वो धीरे धीरे अपने परिवार से दूर हो जाती है। और मेरा सवाल यही था कि सामना करना एक बात है और सहन करना एक बात है, लेकिन ऐसा क्यों है कि परिवार को बिखरने से हमें ज्यादा डर लगता है, लेकिन हर सदस्य की जो भलाई है और सुरक्षा है उस पे फोकस नहीं होता, ये इस बात पे क्यों टिके रहते हैं?
4: सी, कई बार क्या होता है कि हमारे साथ कुछ हुआ किसी मोमेंट पर, लेकिन हम बहुत बाद में उस चीज को कन्फ्रंट करते हैं। तब तक हम उसको अंदर ही अंदर, जैसे वो बीज है, अब वो है तो गलत बीज ना,
3: लेकिन उसको पानी देते रहते हैं
4: तो वो नफरत और रिवेंज के अंदर बदल जाते हैं। हमें किनारा करना होता है किसी एक व्यक्ति से, कई बार किनारा करना पड़ता है
3: जी बिल्कुल,
4: लेकिन अंदर जब रिवेंज बिटरनेस सब हो जाता है तो हमें लगता है सारा परिवार ही दोषी है, परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। और कई बार ये सच भी होता है, जो हमने पहले भी कहा कि बिकॉज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारे बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि समाज क्या कहेगा। और फिर ये जो हम कई बार कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग
3: क्या कहेंगे लोग,
4: ये रोग है, डिजीज टू प्लीज। मना हम समाज में रहते हैं और समाज के जो नियम है उसको फॉलो करना होता है, लेकिन कभी कभी अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज करके, बच्चों की खुशी को कॉम्प्रोमाइज करके गलत को सहन करना क्योंकि समाज हमें एक्सेप्ट करे, वो चीज राइट नहीं है। तो आपके साथ कुछ होता है, आप कन्फ्रंट करें, होता क्या है हम बोलते नहीं है, लेकिन उसको अंदर ही अंदर सोचते जाते हैं, जितनी बार सोचते हैं रीलिव करते हैं, उतनी बार उसका ब्लेम किसी दूसरे पर डालते हैं। पेरेंट्स ने मुझे बचाया नहीं, पेरेंट्स ने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया, समटाइम्स दे आर ऑल्सो नॉट एट फॉल्ट, उनको भी पता ही नहीं होता है।
3: सही बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Am I comfortable? ये सवाल क्यों सेल्फ अवेयरनेस का सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, हैदराबाद में ना एक महिला बैंकर हैं, पहले एचआर प्रोफेशनल थी, तो वो किसी अखबार में शायद मैंने पढ़ा था इस बारे में, तो उनकी पिताजी की मौत हो गई थी, उसके बाद वो लिखती हैं कि मेरी एक और बहन है और हम दोनों को हमारी माँ ने अकेला ही पाल पोस के बड़ा किया, तो कृतज्ञ बहुत हैं, लेकिन अब कमाने वाली मैं ही हूँ। महिला बैंकर है, लिखती हैं कि माँ ने पाल पोस के तो बड़ा किया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे एक लड़का पसंद आने लगा, लेकिन मम्मी को उससे थोड़ी सी वो होने लगी कि भाई अब तो एकमात्र जो साधन है कमाने का वो कहीं नहीं चला जाए, तो उन्होंने क्या किया, उनकी माँ ने उसकी छोटी बहन से उस लड़के की शादी कर दी। तो इससे ये जो महिला बैंकर, इनको बहुत गुस्सा आया और वो बिल्कुल उसने किनारा कर लिया, घर से सारे रिश्ते तोड़ दिए, शहर भी जो है वो शिफ्ट कर लिया, दूसरे शहर में जाके रहने लगी, और अब अपनी माँ को एक रकम भेज देती हैं घर खर्च के लिए, और अपने सारे रिश्ते जो उसने तोड़ लिए। इस केस में कौन सही है कौन गलत है उस पे हम नहीं जाना चाहते, उनको बहुत इस पे बैकलैश मिला, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि घर छोड़ के जाना और एक स्वतंत्र जीवन चुनना उसे स्वार्थी क्यों माना जाता है?
4: देखो, ये हर एक की इंडिविजुअल चॉइस है, इसमें हम सही गलत नहीं कह सकते। अगर कोई इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहता है, उसको कम्फर्टेबल है, और वो अगर उसकी चॉइस है, सो इट इज ओके, पर आप कहें कि सब उस चीज को एक्सेप्ट करें, बैकलैश का मतलब क्या है कि कई लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करें। जब भी हमारे समाज में कोई चीज पहली बार होती है, हमारे मर्जी के अनुसार नहीं होती, हमारे को वो चीज राइट नहीं लगती, तो बैकलैश तो आजकल सोसाइटी में, पहले तो कम्युनिटी से होता था, आज तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस कंट्री से उस कंट्री से अनोनिमसली सब करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जो कर रहे हैं, आर यू कम्फर्टेबल, आपको ठीक लगता है? व्हेन यू डू राइट देयर इज ऑलवेज पीस आफ्टर दैट। ये तरीका मेरा है फाइंड आउट करने का। कई बार हम कुछ कर लेते हैं पर अंदर से कंफर्टेबल नहीं
3: होते हैं।
4: दुखी हैं, परेशान हैं, उदास हैं, बिटरनेस है, नफरत है, कोस रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो फिर आप ही कंफर्टेबल नहीं है उस चीज से। उस समय पर सोचना है कि ये मुझे करना है कि नहीं करना है या कुछ और करना है। अपने डिसीजंस उस पर बेस नहीं करने के बाकी सब क्या सोच रहे हैं, पर क्या वो मुझे कंफर्टेबल है, एम आई फीलिंग पीसफुल, एम आई कंफर्टेबल, वो देखना ज्यादा जरूरी है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: खुद को हर बार प्रूफ करना क्यों जरूरी नहीं होता और साइलेंस का पावर क्या होता है, आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: इस केस में तो महिला ने लिख के भी भेजा था कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, इस वजह से मैं अलग हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार भी दोषी है, या माँ जो है एक तरह से शायद उनके साथ गलत हुआ इसलिए उन्होंने ये करने की कोशिश की। तो हमें एक्सप्लेनेशन क्यों देना पड़ता है कि हमने ये काम किया, हम अलग हुए अपने परिवार से और हम इन पीड़ाओं से गुजर रहे थे।
4: हम एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं वो हमें एक्सेप्ट करे। एक्सप्लेनेशन देने में भी कोई हर्जा नहीं है, हर्जा
3: होता
4: है।
3: जीना मुश्किल कर देते हैं ना कहीं रोज बोलते रहते हैं कि तुम ऐसा हो, तुमने छोड़ दिया अपने परिवार को, तुमको अपनी माँ की चिंता नहीं है, तुम्हें कोई परवाह नहीं है, तो आदमी लगता है यार मुझे थोड़ा यहाँ पे शांति भी चाहिए।
4: सी देखो, एक्सप्लेनेशन देने में कोई हर्जा नहीं है, पर सिद्ध नहीं करना चाहिए। सिद्ध और जिद करने में ऐसा लगता है कि हम गलत हैं। जब हम बहुत ज्यादा उसमें जाते हैं ना, वी कीप ट्राइंग टू प्रूव आवर सेल्फ, वी डोंट नीड टू रियली प्रूव आवर सेल्फ। देखिए, कुछ भी आप समाज में जब कुछ नया होता है ना हट करके, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। लेकिन जब वही व्यक्ति थोड़े समय के बाद सफल हो जाता है, जिसमें 5 साल 10 साल लग जाते हैं, 15 साल भी लग जाते हैं, वो सफल हो जाता है, फिर वही लोग जो रिजेक्ट करते थे, वही लोग जो इंसल्ट करते थे, वही लोग जो कुछ कुछ कहते थे, वही आपसे एडवाइस मांगने आते हैं, वही आपको अच्छा अच्छा कहना शुरू कर देते हैं। तो आप अपने लाइफ के डिसीजंस हर समय उस बेस पर नहीं ले सकते कि लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो राइट है कि नहीं। अगेन, दो चीजें हैं, एक है आप वो कर रहे हैं जिसमें सबकी एक्सेप्टेंस है, पर हो सकता है वो राइट ही नहीं है। हम आज अल्कोहल लेते हैं, सब एक्सेप्ट करते हैं, वाह करते हैं, इट इज अ वेरी, बट वो चीज ही राइट नहीं है। वो चीज ही राइट नहीं है। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। और एक है कि अकेला खड़ा होना पड़ता है, मैं अकेला, हाँ सबके खिलाफ, बट मुझे पता है कि मेरा कर्म सही है, एंड इवन इफ यू हैव टू स्टैंड अलोन इट्स ओके।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या कभी कभी फैमिली से डिस्टेंस बनाना गलत होता है या ये भी हीलिंग का एक हिस्सा हो सकता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मुझे आपसे यही बात पूछनी थी कि इज इट अ सिन टू स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली अगर मैं अलग हो रहा, क्योंकि इसमें हिम्मत बहुत लगती है। अपने परिवार का जो पूरा सेटअप है, कंफर्ट है, इतने सारे लोग प्यार करते हैं, बहुत सारा हमको वहाँ पे शेल्टर करते हैं, वो पूरा सेटअप छोड़ के अलग रहना, इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार हमें स्वार्थी गुनहगार भी ठहरा दिया जाता है कि तुमने अपने परिवार को छोड़ के, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, प्रेशर बहुत रहता है। तो एक तरह आप कह रहे हैं कि देखो, परिवार के लिए समाज क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सही लग रहा है या नहीं वो हमें सोचना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी लगता है ना कि शायद हम अपनी जिंदगी बनाने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए हमें बाहर निकलना जरूरी है, तो उसमें एक गिल्ट फीलिंग कभी ना कभी कहीं ना कहीं आ जाता है कि हम उनको छोड़ के आए। तो क्या इतना गलत है ये?
4: इंटेंट देखना पड़ता है। आज एक आर्मी वाला है, वो भी तो छोड़कर जाता है अपने पेरेंट्स को,
3: लेकिन उसकी स्थिति अलग है।
4: वही तो मैं कह रही हूँ कि ये चीज देखनी पड़ती है ना, कि उस समय पर जब हम उनको छोड़ रहे हैं तो हम किस लिए छोड़ रहे हैं? हम अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं? एक आंसर हर जगह फिट इन नहीं होगा। एक है कि परिवार है तो परिवार में रोल तो होता है। आज बुजुर्ग माता पिता हैं तो आपका फर्ज भी होता है उनका ध्यान रखना। पर कभी कभी सिनारियो अलग होते हैं, जैसे अब ये मिलिट्री का सिनारियो है, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई जॉब के कारण आपको कहीं जाना पड़ता है, आप एक्टर हैं, आपको उतने दिन जाना पड़ता है, तो आप फिर ये सोचते हैं, उसमें गिल्ट में जाने के जगह ये सोचना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। हर बार वो पॉसिबल भी नहीं होता सिनारियो, हम चाहे उनके साथ रह लें। आज आप देखें, कई बार हम देखते हैं कि वही पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, बच्चे बहुत मेहनत करके, क्योंकि पेरेंट्स सैक्रिफाइस करते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन अब उनको जो नौकरी मिलती है वो मिलती है उनको मेट्रो सिटीज में है या विदेश में मिलती है। अब पेरेंट्स ने तो पढ़ाया था ना, उन्होंने भी मेहनत करके पढ़ा, अब उनको अगर एक कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो क्यों नहीं लेंगे उस अपॉर्चुनिटी को। तो आपको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, जहाँ इंटेंट को समझना पड़ेगा कि बच्चे का भाव नहीं है पेरेंट्स को छोड़ना, दोनों में फर्क है। एक है आई डोंट केयर अबाउट यू, आई डोंट वॉन्ट टू टेक केयर, मैं मुझे आपकी कोई फिक्र भी नहीं है और मैं आपका ध्यान भी नहीं रखना चाहता, और एक है कि ये सर्कमस्टेंस है, इस समय पर ये सिनारियो है, इसमें हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, क्या उनको अपने पास बुला सकते हैं, कोई केयर टेकर रख सकते हैं। उसमें हमारे मन में उनके प्रति कुछ नहीं होता, केवल एक्सटर्नल चैलेंज होता है। और कई बार तो हम घर में ही इकट्ठे होते हैं लेकिन मन के अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट और दूरियां हैं। मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट और दूरियां नहीं है ना, तो कई बार दूर रह करके भी आप बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेवारियों को निभा सकते हैं।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: लाइफ में प्रायोरिटीज क्लियर होना क्यों कंफ्यूजन को कम करता है और क्लैरिटी लाता है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, बहुत साल पहले की बात है, मुझे याद है कि मैं कलकत्ते में था, मेरे माता पिता कलकत्ते में रहते थे और मुझे कलकत्ता छोड़ के नहीं जाना था, लेकिन किसी कारणवश मेरा ट्रांसफर दिल्ली हुआ, मैं दिल्ली गया और फिर एक समय पे मुझे पता चला कि मेरी माँ बहुत बीमार हैं, तो मैंने कहा कि भैया कुछ भी हो जाए मैं वापस कलकत्ते जा रहा हूँ, और मेरे CEO ने कहा ठीक है भाई तुम आ जाओ, लेकिन उसके 1.5 साल के अंदर ही उन्होंने कहा कि अब तुमको बम्बई आना पड़ेगा, और मैं बहुत दिनों तक उसको टालता रहा लेकिन आना पड़ा। मैंने अपनी माँ से भी बात की तो माँ ने कहा कि तो चले जाओ, और मेरे बहुत अच्छे बॉस थे, उन्होंने कहा देखो अभी तो माँ की हालत ठीक है तुम आ जाओ। मैं बम्बई आ गया और आने के 2 साल बाद ही मेरी माँ का निधन हो गया। अब वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि मैं अगर कलकत्ते में रहता, उनके पास रहता, उनके आखिरी दिनों में सेवा कर पाता, और ये कई लोगों के साथ होता है, कई परिवारों के साथ होता है, गिल्ट ज्यादा नहीं कि मैं छोड़ के निकल आया, उनके भाव में उनकी तरफ से शायद ऐसा ना रहा होगा, उन्होंने अपने बड़े प्यार से भेजा, मैं जाता था भी रहता था, लेकिन उनके आखिरी दिनों में उनके साथ नहीं रह पाना, ये गिल्ट हमेशा रहता है। तो आपको एक जिंदगी चुननी भी है, आपको अपना परिवार का ख्याल भी रखना है, आपको पैसे भी कमाने हैं, और कहीं ना कहीं ये गिल्ट ना हो कि आप परिवार वालों के साथ तब ना रहे जब वो उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसका संतुलन कैसे बनाए?
4: देखिए, किसी ने शरीर छोड़ना वो तो निश्चित होता है ना, डेथ और बर्थ, तो आप इधर थे और उसके पीछे से उन्होंने शरीर छोड़ा, ऐसा नहीं होता। लेकिन दूसरी ये बात कि हम उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो हर एक की पर्सनल चॉइस है, उसमें राइट रॉन्ग नहीं है। आप आ गए तो भी कुछ गलत नहीं है, पर अगर आप नहीं आते और थोड़ा समय और उनके साथ स्पेंड करते तो भी गलत नहीं था। प्रायोरिटी, कईयों के लिए उस समय प्रायोरिटी होती है कि उनकी जिम्मेवारी है और वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, बच्चे हैं, परिवार को चलाना है, उतना धन कमाना है, उसके लिए ऑप्शन नहीं था, आना ही था। किसी के लिए उस समय प्रायोरिटी होती है कि नहीं, मैंने भले अभी इस समय मुझे धन नहीं है मेरी प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे तो इनके साथ ही समय बिताना है, नहीं तो मुझे रिग्रेट रहेगा लाइफ में, मुझे ये रिग्रेट नहीं चाहिए, मुझे अपना ये समय उनके साथ ही बिताना है। इवन इफ आई अर्न लिटिल लेस इन दीज फ्यू ईयर्स इट इज ओके, मनी इज नॉट राइट नाउ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। क्या मेरी प्रायोरिटी है उस समय पर, उस सीन में, उस सिनारियो में क्या मेरी जिम्मेवारी है, उसको देखते हुए हम डिसीजन लेते हैं। गिल्ट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिस समय हम डिसीजन ले रहे हैं वो मेरी चॉइस है, उसमें ये फायदा था इसलिए मैंने ये चूज किया, और फिर ऐसे अपने से बात करके अपने को हल्का करना चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब हम खुद को बेटर समझने लगते हैं तो इसका असर हमारे बिहेवियर पर भी पड़ता है। ये शिफ्ट कैसे आता है, आइए मिलकर जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर कहते हैं कि हाइंडसाइट में सब सही लगता है, तो उस समय मैंने डिसीजन लिया और उस समय मुझे सही लगा हमने किया, लेकिन कई बार आप अपने डिसीजन को क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि काश मैंने ये डिसीजन उस समय नहीं लिया होता या ये डिसीजन ले लिया होता, तब दिक्कत होती है। दिक्कत वरना नहीं होती, अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
4: हमें से कोई भी पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, और हमें से कोई भी नहीं है जिसने सारे डिसीजन राइट लिए। We're all work in progress. उस समय जब हम कोई डिसीजन लेते हैं ना, वो हमें बिल्कुल राइट लग रहा होता है। हमारी जितनी इंटेलेक्चुअल इमोशनल कैपेसिटी है, हम वो डिसीजन इसलिए नहीं लेते कि हमें गलत लग रहा है और हम ले रहे हैं। हमें वो सच में जेन्युइनली राइट लग रहा होता है। बाद में अगर हमें लगता है कि वो राइट नहीं है, मे बी नाउ शायद आपके मदर के साथ ऐसा हुआ, आपके फादर के साथ आप डिफरेंटली कोई डिसीजन चूज करते हैं, इट इज ओके। व्हेन वी नो बेटर वी डू बेटर, लेकिन इग्नोरेंस इज नॉट अ क्राइम ना। हम उस चीज में, और कई बार ऐसा होगा कोई ब्लेम नहीं कर रहा है,
3: लेकिन मन में वो बात चल रही है,
4: वो हम कर रहे हैं, क्योंकि शायद हमारे मन में या दिल थी कि आई शुड हैव स्पेंट मोर टाइम विद माय फैमिली। अगर आपको ऐसा लगता है और आपने रियलाइज किया कि इस चीज का एक रिग्रेट आपके मन में रह जाता है, सो मे बी विद द अदर पेरेंट वो चीज आप रिपीट नहीं करें। विद द अदर पेरेंट आपके पास फिर चॉइस है कि आप कितना समय उनके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। ये रिग्रेट कईयों के मन में रह जाती है, लेकिन अगेन आई विल से कि हर एक के पास वो ऑप्शन नहीं होता। तो क्या कर सकते हैं, रोज फोन पर बात कर सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि आप कभी भी हमें फोन करें, आपको लगता है कि उनको हमारी जरूरत है, तो काम छोड़ करके भी जा करके उनको प्रायोरिटी बना सकते हैं। व्हाट इज पॉसिबल, समटाइम्स जो पॉसिबल है वो भी नहीं करते, उसका गिल्ट ज्यादा होता है। वो फोन उठा सकते थे पर नहीं उठाया, दो दिन की छुट्टी ले सकते थे पर नहीं ली, थोड़ा सा आधा घंटा ज्यादा बात कर सकते थे। समटाइम्स पेरेंट्स जब ओल्ड हो जाते हैं, रिपीटेड भी वही बात करते हैं, उनका फोन देखकर ही आपको पता होता है वो क्या बात करने वाले हैं। आप एक बात उनको कई बार समझाते हैं, वो बच्चे जैसा हो जाते हैं। हम बच्चे थे तो हम भी तो एक ही बात बार बार करते थे, तो वो कितने प्यार से एक ही बात सुनते थे और एक ही बात हमको समझाते थे। आज वो बच्चे बन गए, अगर एक ही बात वो 50 बार भी करते हैं और अगर हम सुन लेते हैं और एक्नॉलेज कर लेते हैं, एंड दे फील दैट कोई मुझे सुनता है, कोई है मेरा अपना, तो ये भी तो सेवा है ना। फिजिकली हाजिर होना सेवा नहीं है, लेकिन इमोशनली प्रेजेंट होना भी अपने आप में सेवा है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Namaskar. आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विशाल सेठिया और ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया के साथ। आइए अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर मुक्ति हैं, वो लिखती हैं कि भक्ति योग की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, रोज जप करने का सोचती हूँ, पर हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है और मैं नहीं कर पाती हूँ। जब सब कुछ समझ में आता है तो फिर प्रैक्टिस क्यों नहीं हो पाती? और क्या अभी भी जागरूकता मेरे अंदर कम है? अंदर ऐसा क्या है जो जाग नहीं पा रहा?
3: लगन की कमी है
2: जी।
3: जब किसी चीज के प्रति आपको बहुत लगन होती है तो आप वेट करते हैं वो करने के लिए, तो केवल समझ काफी नहीं होती कई बार। वो जब किसी चीज की लगन लग जाती है ना, तो फिर आपको दिल होती है करने की, मजबूरी से नहीं आप करते, आप उस चीज को दिल से करते हैं। और इसीलिए जब वो लगन लगने के लिए थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सो इनिशियली अगर हम कुछ भी करते हैं, सो सेट अ वेरी स्मॉल गोल फॉर योरसेल्फ,
2: राइट,
3: क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देगा। मे बी आप 1 वीक का गोल सेट करें कि मुझे 1 वीक में एवरी डे 1 आवर के लिए करना है, और करना ही है। उसमें आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप बहुत लॉन्ग टर्म गोल बना लेंगे तो कई बार मुश्किल लगता है। जस्ट डू इट फॉर 1 वीक और उसमें कैसे भी मुझे करना ही है, वो आपको एक एक्सपीरियंस देगा,
2: राइट, और उससे आदत बनेगी। और जरूरी नहीं कि एक हफ्ते
3: उससे आपको दिल होगी, आदत तो अभी भी नहीं बनेगी, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है आपको मोटिवेट करेगा।
2: फिर एक हफ्ता
3: जैसे हम एक्सरसाइज के लिए सोचते हैं करेंगे, हम यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं, करेंगे होता नहीं है, फिर देन समटाइम्स वी थिंक कि नहीं, 1 मंथ की मेंबरशिप लेते हैं, सिर्फ 1 मंथ करके देखते हैं, रिजल्ट आता है, यू फील फ्लेक्सिबल, यू फील लाइट, यू फील कम्फर्टेबल, देन यू वॉन्ट टू कंटिन्यू,
2: राइट।
3: तो जब तक आपके पास उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो लगन बैठती नहीं है।
2: छोटे छोटे स्टेप्स में करिए, हफ्ते भर में,
3: स्टेप्स में करिए,
2: 1 घंटा नहीं तो 20 मिनट तो बैठिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको जब बेनिफिट मिलेगा तो करोगे।

0: देखो ये हर चीज़ में होता है, मुझे कई लोग मिलते हैं कहते हैं हम सुबह उठना चाहते हैं, हम उठते भी हैं पर हमारे से होता नहीं है। आप कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम करते हैं जो आप पहले नहीं करते थे, वो डिफिकल्टी होती है, वो एकदम नहीं होगी। गिव अप नहीं करना होता। इफ़ यू नो दिस इज राइट, आपको पता है ये सही है, इसमें ये बेनिफिट है, इसमें ये प्राप्ति है, वो टेस्टेड है, तो फिर आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे, पहले डिफिकल्ट लगेगा, फिर इजी हो जाएगा, फिर वो नेचुरल नेचर बन जाएगा।
1: बहुत अच्छी बात है। मुक्ति जी को मैं कहना चाहता हूँ कि दुख की बात यह है कि वक्त बहुत कम है, दुख की बात यह है कि वक्त बहुत कम है, और खुशी की बात यह है कि अभी भी वक्त है। तो बस याद रखिए और आगे बढ़िए
0: जी।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. This is your girl Priscilla on Mirchi Mornings, जहाँ पर caffeine हो सकती है कम लेकिन drama होगा full on. और देखो भाई, Indians in America are built differently. Mom जो है वो कहती है बेटा jacket पहनकर बाहर जाना, और uncle लोग shorts पहनकर Costco जा रहे होते हैं, like they are roaming on a Goa beach. देखो आज के time मेरा सुबह सुबह office जाना भी खतरे से खाली नहीं है. सुबह सुबह 8:01 पर boss का email आता है कहते हुए gentle reminder. यार मुझे तो ना इसमें पैसिव अग्रेशन दिखाई देता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो मुझे फटाफट से फॉलो भी कर लो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. और व्हाट्सएप पर जल्दी से भेजो अपने मैसेजेस 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. लेकिन लाइफ में फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि चल रहा है मिर्ची मॉर्निंग्स अगले कुछ घंटों के लिए मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में. क्योंकि कहते हैं ना, सुबह की शुरुआत अगर अच्छी हो तो पूरा दिन बन जाता है. फिलहाल बैक टू बैक मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए प्ले करती हूँ. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La vieja la burga. Milchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 35/14A, तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: से डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल।
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: प्यार
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग क्यूटीज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। ये है मिर्ची मॉर्निंग्स और फ्रेश कप ऑफ चाय गॉसिप के साथ थोड़ी सी हिस्ट्री लेकर आई हूँ। सो लेट्स रिवाइंड। सबसे पहले चलते हैं 1498 में पोर्टुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा रीच्ड कोझिकोड़े On India's Malabar coast, and just like that, Europe discovered the OG spice route. Phir 1873 mein Levi Strauss and Jacob Davis patented blue jeans with copper rivets. 1875 mein 17 countries signed the Metre Convention in Paris. This helped standardize measurements worldwide. And today also reminds us of history's darkest chapter. In 1940, the first prisoners arrived at Auschwitz, the Nazi concentration camp in occupied Poland during World War II. A solemn reminder of why humanity, compassion and standing against hate will always matter. और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन भी है। इट्स कॉल्ड वर्ल्ड बी डे, यानी कि बी डबल ई डे। सो प्लीज टुडे इफ यू सी बीज, बी रिस्पेक्टफुल। And फिलहाल follow me on Instagram and X. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp number है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. फिलहाल मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम है, stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: मिर्ची

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: This is your girl Priscilla on Mirchi Mornings. यहाँ पर playlist hot होती जा रही है भाई साहब, लेकिन अभी तापमान कितना hot या cool है, let's find out. Right now it's around 74 degrees Fahrenheit and mostly clear outside. लेकिन don't let this innocent morning fool you, क्योंकि by 3 p.m. afternoon partly cloudy skies होने वाले हैं, हमारे life में unwanted work meetings की तरह घुस जाने वाले हैं. Today's temperatures are swinging between 68 degrees Fahrenheit to a spicy 92 degrees Fahrenheit. लेकिन फील होने वाला है 93 डिग्री फारेनहाइट के आसपास. एंड इफ यू आर वंडरिंग कि आज के दिन घर से निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, तो मैं बता दूं, देयर इज अ हीट एडवाइजरी इन इफेक्ट टिल 8 पीएम ईस्टर्न टाइम. सो प्लीज कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, अपने आप को अच्छे से कवर करके बाहर निकलना. वाटर पियो, कोकोनट वाटर पियो, इवन फिल अप योर स्टैनली कप विद कोल्ड ड्रिंक्स. देखो पिछले 24 घंटों में तो कोई बरसात नहीं हुई थी, लेकिन ये 24 घंटे देखने वाले हैं 7 मिलीमीटर की बरसात. एंड इफ कम्पेयर टू येस्टरडे, ऑलमोस्ट सेम टू सेम टेम्परेचर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है. येस्टरडे पीक्ड एट 96 डिग्रीज फारेनहाइट और आज जाने वाला है मैक्सिमम 92 डिग्रीज फारेनहाइट तक. सो वेदर यू आर हेडिंग टू वर्क, स्कूल ड्रॉप ऑफ, या फिर बस एसी के सामने

एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस एंजॉय कर रहे हो, मुझे अपने साथ में रखो। मेरा नाम है प्रिसला, मिर्ची मॉर्निंग्स पर तुम सुन रहे हो गर्मा गर्म मिर्चीदार बैंगर्स जो आने वाले हैं अब, और तुम जाने वाले हो मिर्ची प्रिस पर, दैट इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Radio Mitri New York. It's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स

0: Milci. Buscabana, sacabana. Burga, burga. La virgua, la burga. Milci, burga.
1: Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Bank support.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात है
2: सर, I'm so sorry, पूरा बताइए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है,
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल है कि दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे,
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
2: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
2: जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. मिर्ची फ्रेश माल.
3: रोमांटिक फील्स और सोलफुल मेलोडी के लिए सुनो खासियत.

0: इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: हेलो हेलो, दिस इज योर गर्ल विद यू ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला एंड अपेरेंटली इन द US डॉग नानीज आर अर्निंग अराउंड $2,500 पर वीक। यस, पर वीक, मतलब कि द डॉग इज लिविंग अ मोर लग्जूरियस लाइफ देन मोस्ट ऑफ अस सर्वाइविंग ऑन आइस्ड कॉफी एंड इमोशनल डैमेज। According to reports, full-time dog nannies can make around $40 to $50 an hour. And live-in nannies, they are earning up to $800 per day. At this point, even Indian parents are confused. Yaar, Sharma ji ka beta doctor hai, lekin Verma ji ka beta Labrador ki nanny ban chuka hai. Aur wo zyada rich hai. And listen to this. In the UK, one family even advertised a live-in dog nanny role, paying around £100,000 a year. Yes, £100,000, let that sink in. कहीं ना कहीं कोई देसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी अपने पिलो में सर रखकर रो रहा होगा। But jokes apart, this actually shows how huge pet culture has become globally. For many people, pets are family, especially expats living away from home and family. Pets become roommates, therapists, emotional support system, and occasionally the only living being happy to see you after work. Also, imagine the interview process. So, where do you see yourself in 5 years? Hopefully, being promoted from belly rub intern to senior treat distribution manager. Ha ha. वैसे तुम अपने पेट पिक्चर्स मुझे भी भेज सकते हो। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIBRIS, और व्हाट्सएप कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my birthday babies. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड इफ इट इज योर बर्थडे टुडे, हैप्पी बर्थडे टू यू यार. जादू की जप्पी तुम्हें और सारी खुशियां तुम्हारी लाइफ की पूरी हो जाए. एंड आज के दिन में योर कॉफी स्टे स्ट्रॉन्ग एंड योर बॉस स्टे ऑफलाइन एंड योर रिलेटिव्स डोंट बॉदर यू दैट मच. एंड गेस व्हाट, यू शेयर योर बर्थडे विद सम सीरियसली लेजेंडरी पीपल. फर्स्ट अप इज एनटी रामा राव जूनियर, एके जूनियर एनटीआर. एंड देन वी हैव एक नाम वाली सेलिब्रिटी, दी आइकॉनिक Cher. And also born today is Busta Rhymes. And for the period drama lover, Josh O'Connor is also celebrating today. And आज जिनका बर्थडे है वो मेन कैरेक्टर एनर्जी के साथ साथ टैलेंटेड होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं, स्टाइलिश होते हैं एंड प्रोबेबली हर जोक के बाद हा हा हा लिखकर टाइप करते हैं रादर देन इमोजीज. सो इफ यू आर सेलिब्रेटिंग टुडे, पार्टी हार्ड, खाओ पियो ऐश करो, कैलोरीज काउंट मत करो, अपनी सेल्फीज खींचो, मुझे भी भेज सकते हो, मुझे अपने इन्वाइट्स भी भेज सकते हो, केक्स भी भेज सकते हो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. अपने बर्थडे शाउट आउट भी यहीं पर भेजने हैं. और व्हाट्सएप पर अगर भेजना चाहते हो तो 9033 मिर्ची, दैट्स माय नंबर, दैट्स 9033647244. फिलहाल मिर्ची दार बैंगर्स बजाते तुम्हारे बर्थडे के उपलक्ष में. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला इट्स हॉट
2: ऑलराइट, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सुनने वाले हो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
3: आज जोल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,500, $4,500 पर रहे हैं उसके साथ। आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस कल से डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं, नीचे ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड में डेफिनेटली एक एंट्री पॉइंट बनता है। गोल्ड में जो इन्वेस्ट करना चाहें, इन्वेस्टर गोल्ड बार्स 1 ounce 100 ग्राम किलो बार्स पैम सर्टिफाइड गोल्ड और सिल्वर अवेलेबल एट राज ज्वेल्स। आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए हिंदुस्तान से, जो अबाउट 15% सस्ता है अमेरिका में गोल्ड के प्राइस, गोल्ड बार्स में इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स के था। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
2: दैट वाज योर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टा और एक्स पर फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो, ठीक करने के लिए डिटेल होना चाहिए।
3: जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: प्यार
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
7: हियर वी गो अगेन, ऑथेंटिक ओरिजिनल एंड बेटर देन आवर राइट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my desi people. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings पर राशियों का फल जानने का टाइम.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: It is यानी मेष राशि. आज लाइफ फास्ट फॉरवर्ड मोड में जा रही है बॉस. यू आर अहेड ऑफ द गेम, सो डोंट वेस्ट एनर्जी प्रूविंग योरसेल्फ टू पीपल स्टिल टाइपिंग विद वन फिंगर. लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक. लकी नंबर इज 17. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, नॉट एवरीवन इज इन योर कंट्रोल एंड ऑनेस्टली दैट्स गुड. आज थोड़ा सा जो होगा देखा जाएगा टाइप की एनर्जी रखो. योर पीस मैटर्स मोर देन एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. लकी कलर फॉर यू इज ब्राउन. लकी नंबर इज 4. जेमिनी यानी मिथुन राशि, मेन कैरेक्टर अलर्ट. द सन एंटर्स योर साइन टुडे, सो फ्रेश वाइब्स इनकमिंग. बस एक काम करो, डोंट मेक अ 97 आइटम लाइफ प्लान बिफोर ब्रेकफास्ट. बेबी स्टेप्स, नॉट टेड टॉक. लकी कलर इज लाइम ग्रीन. लकी नंबर इज 29. कैंसर यानी कर्क राशि, टुडे इज लेस हसल कल्चर एंड मोर सॉफ्ट लाइफ. स्लो डाउन यार वाला दिन. फील योर फीलिंग्स, इमोट योर इमोशंस. इवन योर स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट नोज यू नीड इमोशनल रिकवरी टाइम. लकी कलर इज डेजर्ट रोज. लकी नंबर इज 8. लियो यानी कि सिंह राशि, फ्रेंड्स इज इक्वल टू थेरेपी टुडे. लाफ मोर, स्ट्रेस लेस. योर वाइब इज अट्रैक्टिंग पीपल, सो मे बी डोंट गोस्ट एवरीवन एंड डिसअपीयर. लकी कलर फॉर यू इज सनसेट येलो. लकी नंबर इज 33. वर्गो यानी कन्या राशि, यू आर केपेबल ऑफ वे मोर देन यू थिंक. स्टॉप प्लेइंग स्मॉल जस्ट बिकॉज यू आर स्केयर ऑफ फेलिंग. कॉन्फिडेंस पहनो टुडे लाइक ओवरड्रेस्ड इंडियंस एट एयरपोर्ट. लकी कलर इज गोल्ड कलर. लकी नंबर इज 11. एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन नंबर 1 विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है Mirchi Priss, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

only on Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: जी,
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की?
0: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: And just like that, my people, today's Mirchi Mornings is coming to an end. This is your girl Priscilla signing off with one final piece of Mirchi Dar update. So here's the update. A woman accused of stealing gold jewelry worth over 1.66 crore rupees from a showroom in Ahmedabad, Gujarat, was arrested in Delhi after allegedly going on the run with an accomplice. Police ka kehna hai, Harshida Shetty fled Gujarat with partner in crime Mayur Mali. But plot twist ho gaya unke saath. During their stay at a Delhi hotel, the guy reportedly disappeared with most of the stolen jewelry and left her behind. Matlab chor bhi ab ek dusre ko dhoka dene lage hai pyar mein. Waise to mission successful ho gaya, relationship unsuccessful reh gaya, aise bahut logo ki life mein hota hai. Lekin honestly, this sounds less like a crime update and more like a rejected Netflix ka thriller. Wo bhi गुजरात दिल्ली एडिशन कॉल्ड गोल्ड डिगर्स गेट इट. अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखा तो देखना, उसकी चोरी का भी वीडियो बड़ा हाईलाइट हुआ था कुछ दिन पहले. एंड ऑन दैट नोट, Priscilla says रादा बाय बाय टू यू. यू बी गुड, हैव अ ग्रेट डे अहेड. खाओ पियो ऐश करो और मिर्ची सुनते रहो. मुझसे कनेक्ट करना है तो इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट. One more email.

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की पहली मुलाकात हुई थी 1971 की फिल्म गुड्डी के सेट पर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जया बच्चन तब जया भादुरी थी, फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी और अमिताभ का इसमें एक छोटा सा कैमियो रोल था, लेकिन ये पहली बार नहीं था कि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। अमिताभ जया को पहले एक मैगजीन में एक प्रिंट एड में देख चुके थे और थोड़ी बहुत ऐसे इंक्वायरी भी की थी कि ये लड़की कौन है, जबकि जया ने अमिताभ को नोटिस किया था जब वो पुणे में FTII में पढ़ रही थी और अमिताभ वहां पर किसी काम से आए थे, तो जया को तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। अच्छा, फिर इनकी पहली फिल्म एज लीड एक्टर्स थी 1972 की एक नजर। फिर जब जंजीर फिल्म में इतने लंबे इतनी भारी आवाज वाले इस नए एक्टर के साथ कोई हीरोइन काम करने को तैयार नहीं थी, तब जया बच्चन ने उनके साथ काम किया और वहीं से बात जो है देखिए पक्की हो गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, sabka bana. Ya bana. Murga, murga. Naviyat wala murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello, Manoj ji se baat kar sakta hu main?
3: Haan ji, bol raha hu Manoj.
4: Haan, Manoj ji, main Yadav bol raha hu. Oil se ye petrol ki problem aapko bhi ho rahi hai kya?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
4: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान।
3: कितने दिन तक?
4: ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
4: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
4: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
4: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: अच्छा।
4: हाँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
4: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
4: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर? हाँ, कुकर तो है।
4: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। हाँ, कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा,
4: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
4: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
4: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसे पकाऊं?
4: हाँ, तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको। इससे ज्यादा और क्या करें यार,
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
4: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं, कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
4: नहीं, पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
4: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा तू?
4: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: अरे यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: Purani Jeans with Charu, only on

राकेश रोशन साहब की एज डायरेक्टर जब पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी तब उन्होंने एक मन्नत मांगी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो ये फिल्म थी 1987 की खुद गर्ल्स और उनकी मन्नत ये थी कि अगर ये फिल्म हिट हो गई तो वो अपना सर मुंडवा लेंगे। जी नेचुरल हेयर लॉस को कवर करने का अच्छा तरीका। नहीं नहीं, उनका नेचुरल हेयर लॉस नहीं था, उन्होंने वाकई में ऐसी मन्नत मांगी थी। वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे और फिल्म हो गई सुपरहिट, लेकिन उसके बाद ये थोड़े से घबरा गए, कंफ्यूज हो गए कि ऐसे कैसे शेव कर लें। लेकिन जब इनकी अगली फिल्म शुरू होने वाली थी ना 1988 की खून भरी मांग, तब उनको एक रात पहले नींद नहीं आई कि यार मैंने एक मन्नत मांगी थी, एक प्रॉमिस किया था ऊपर वाले से, वो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने सुबह सुबह जो सबसे पहला काम कराया वो ये कि बाबर को बुलवा के और अपना सर मुंडवा लिया। उनका ये लुक सबको इतना पसंद आया, वो इतना पॉपुलर हुआ कि उन्होंने फिर वैसा ही लुक रख दिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

Thank you.

0: वो कौन सा पहला गाना था जो सरोज खान ने श्रीदेवी के लिए कोरियोग्राफ किया था? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार एक इंटरव्यू में सरोज खान ने शेयर किया था, सुनिए।
1: एक कैमरामैन है अकबर, एक दिन वो मेरे घर पे आए और बोले जाओ हिम्मत वाला पिक्चर देखो, क्या डांस है उसमें, क्या हीरोइन नाची है। मैं बोली सच्ची? बोले देखने लायक है, जा जा देख। और मैं जाके हिम्मत वाला पिक्चर देखी, तो मैं बोली, मैंने कहा काश मुझे भी कोई ऐसी डांसर मिले तो मैं अपना डांस दिखाऊं। घर आए तो मेरे को फोन आया सुभाष जी का, बोले सरोज गाना तैयार है कर्मा के लिए, गाना तैयार है आके ले ले और प्रैक्टिस कर ले, कश्मीर में शूटिंग है। मैंने कहा सुभाष जी आपने बताया नहीं हीरोइन किसको लिया, तो बोले श्रीदेवी को। तो मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया, तो मैं बोली श्रीदेवी मैं अब भी उसका गाना देख के आ रही, सुभाष जी वो नाचेगी मेरे साथ, क्यों नहीं नाचेगी।
0: तो ये शुरुआत कर्मा से हुई, उसके बाद फिर चालबाज, चांदनी, मिस्टर इंडिया, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली

1971 में एक फिल्म आई थी पराया धन, जिसका सब्जेक्ट, जिसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसमें हीरो थे न्यू कमर राकेश रोशन। हालांकि इसमें हीरो का कोई खास रोल नहीं था, मेन रोल हीरोइन का था। हीरोइन थी हेमा मालिनी, वो भी उस टाइम पे रिलेटिवली नई थी। इसमें बलराज साहनी साहब भी थे, लेकिन ये फिल्म उतनी ज्यादा नहीं चली। क्यों? क्योंकि उस टाइम राजेश खन्ना का पागलपन सवार था लोगों पर। राजेश खन्ना आराधना फिल्म के बाद इतने हिट हो गए थे, ऐसे सेंसेशनल हो गए थे कि उनकी जो फिल्म आ रही थी, अच्छी बुरी गुड एवरेज, लोग देखे जा रहे थे, उन्हीं को हिट कराए जा रहे थे। उस चक्कर में ये जो और अच्छी फिल्में साइड साइड में आ रही थी ना, वो इतनी नहीं चल पा रही थी। ये फिल्म चली थी, बट जितना सक्सेस आई थिंक ये डिजर्व करती थी, उतना इसको उस टाइम पे नहीं मिला। इसके गाने बहुत पॉपुलर हुए थे, तो इसी फिल्म का एक गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

बहनों भाइयों, 1985 का सुपरहिट गीत जो गीत माला पर पायदान नंबर एक पर था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गाना सुन साहिबा सुन। मिड 80s में दिस सॉन्ग वॉज एवरीवेयर। लेकिन आपको पता है इस गाने की ट्यून ओरिजिनली मिड 50s में कंपोज हुई थी। जी, शंकर जयकिशन ने ये ट्यून कंपोज की थी अजंता नाम की मूवी के गाने के लिए, जो फिल्म बाद में नहीं बनी थी। राज कपूर साहब की ही वो फिल्म थी, लेकिन ये ट्यून अनयूज्ड पड़ी हुई थी। तो रविंद्र जैन जब राम तेरी गंगा मैली का म्यूजिक कंपोज कर रहे थे, इस ट्यून को इस्तेमाल किया गया, थोड़ा बहुत बदलाव किया गया। हसरत जयपुरी साहब ने ये गाना लिखा, लता मंगेशकर ने गाया और ये सुपर डुपर हिट हो गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
3: हाँ जी हाँ जी।
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ।
3: हाँ जी हेलो।
4: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
4: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 3rd K 35/14A 1st फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
3: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
3: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
4: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
4: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
3: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
4: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
3: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
4: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं,
4: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
2: इट्स पटाक।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

1987 की फिल्म ईमानदार का एक बहुत पॉपुलर गाना किशोर कुमार की आवाज में भी रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन फिल्म में जो वर्जन रखा गया था वो उनकी आवाज वाला नहीं था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाना था और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। तेरा ही नाम लिखा रखा है या तेरा ही दर्द छुपा रखा है, आई थिंक दोनों था। एनीवे, सो किशोर कुमार की आवाज में भी ये गाना रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन फाइनल वर्जन सुरेश वाडकर की आवाज वाला रखा गया था, जिसका रीजन ये सुनने में आता है कि ये इस फिल्म में गाना संजय दत्त पे पिक्चराइज था, एंड संजय दत्त उस टाइम काफी नए थे और सुरेश वाडकर भी उस टाइम नए थे, तो उनकी आवाज संजय दत्त पे ज्यादा सूट कर रही थी एज कम्पेयर टू किशोर कुमार, बिकॉज किशोर कुमार की आवाज तब तक काफी मच्योर, काफी पॉपुलर हो चुकी थी। सो टू गिव दैट नोवेल्टी फैक्टर, सुरेश वाडकर की आवाज वाला जो वर्जन है वो फिल्म में रखा गया। सुरेश वाडकर के साथ इसमें आशा भोसले की आवाज भी है, प्रकाश मेहरा ने ये गाना लिखा है, कम्पोज बाय कल्याण जी आनंद जी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

रानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: राजेश रोशन साहब का कंपोज किया हुआ गाना।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये तो आप जानते हैं ना कि राजेश रोशन ऋतिक रोशन के चाचू हैं। और कुछ टाइम पहले इनकी फैमिली पे जब एक डॉक्यूमेंट्री आई थी रोशन करके, उसके लॉन्च पे ना ऋतिक रोशन ने राजेश रोशन साहब के कंपोज किए हुए गाने के बारे में बड़े इंटरेस्टिंग बात शेयर की थी, सुनिए।
2: वो याराना फिल्म का संगीत रिकॉर्ड हो रहा था और चाचा मेरे पास आए और मुझे पूछा कि इस गाने में मैं ये रखूं कि ये रखूं। तो आज तक आई फील वेरी वेरी प्राउड कि याराना का जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है तेरे जैसा यार, उस गाने में मेरा भी थोड़ा योगदान है। तो आई फील वेरी वेरी प्राउड, आई एम वेरी वेरी प्राउड कि मैं अपने चाचा का भतीजा हूँ। वो मेरी

0: मैंने तो खुदा माना।
1: आ हा हा, बहुत अच्छा गाया, आगे से नहीं गाना। नहीं, अच्छा गाया, अच्छा गाया। तो यही गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

रंजीत साहब की एज विलन शुरुआत हुई थी 1970 की फिल्म सावन भादो से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन उनको इमेंस पॉपुलैरिटी मिली 1971 की फिल्म शर्मीली से, जिसमें उनका बहुत ही ढेंटड़न टाइप का नेगेटिव रोल था। लेकिन इस फिल्म के प्रीमियर पे ना बहुत ही फनी चीज हुई थी। रंजीत साहब की टिपिकल पंजाबी फैमिली, उनका पूरा टब्बर जो है वो फिल्म के प्रीमियर पे आया था। उनका इतना नेगेटिव रोल देख के ना वो इतने अपसेट हो गए कि बीच फिल्म में से उठ के चले गए। थोड़ी देर बाद जब रंजीत साहब वापस घर गए तो पूरा परिवार गुस्से में बैठा हुआ था उनकी क्लास लेने के लिए कि ये तू की करदा पिया है, ये तेरा काम है। तो इस तरह से उनके विलन वाले करियर की शुरुआत हुई थी। कितनी क्यूट होती है फैमिलीज भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्च।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

ओए होए, थोड़ा उदास गाना, लेकिन फिल्म का नाम बड़ा हैप्पी। आप आए बहार आई, मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मुझे याद है इस फिल्म में ना राजेंद्र नाथ जो कॉमेडियन होते हैं उनका नाम विस्की होता है। ये पुरानी फिल्मों में विलन्स के नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते थे। जैसे मैं ढूंढ रही थी तो राजेंद्र नाथ साहब का ही नाम फिल्मों में क्या क्या रहा है, पोपटलाल, डिफू, प्यारे, चिंटू, पांडू, झटपट सिंह, विलायती राम, गोपू चंद, मनमौजी। इसी बात पे मौज मस्ती वाला गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है?

0: Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi. Mirchi.
1: Hello. Hello.
2: Sir, very good evening. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात है
2: सर, I'm so sorry, पूरा बताइए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: I'm so sorry सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: I'm so sorry सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल के दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे.
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी. अरे सर, रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

तो 1974 की रोटी फिल्म मनमोहन देसाई साहब की पहली फिल्म थी जो कादर खान साहब ने लिखी थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और कादर खान ने जो इस फिल्म के लिए डायलॉग्स लिखे ना, वो सुन के देसाई साहब इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, उछल पड़े वो, मतलब यहाँ वहाँ कंट्रोल में नहीं आ रहे थे वो। खुशी में उन्होंने कादर खान साहब को एक टेलीविजन गिफ्ट किया, एक घड़ी गिफ्ट की। और जब उनसे पूछा कि आप ये डायलॉग्स लिखने का कितना पैसा लेते हैं, कादर खान साहब ने कहा 21,000 रुपए। तो देसाई साहब ने उनको कहा कि रबिश, आपको 1,21,000 मिलेगा। भाई ऐसे मालदार दिलदार लोग हम सबको जीवन में मिलते रहे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: 1984 की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म उत्सव शशि कपूर साहब ने प्रोड्यूस की थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसमें उन्होंने एक्ट भी किया था। इनफैक्ट जो रोल शशि कपूर साहब ने प्ले किया था ना, वो पहले अमिताभ बच्चन करने वाले थे, मतलब उनको अप्रोच किया गया था, लेकिन किस वजह से वो नहीं कर पाए, एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए शशि कपूर साहब ने इस बारे में क्या कहा था।
1: अमिताभ जी काम करने वाले थे क्योंकि पहले उनका जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से उनकी हर शेड्यूल, उनका हर प्रोग्राम 1-1.5 साल आगे गया, तो फिर मैं नहीं उनको ले सका। तो जो मैंने रोल किया है वो रोल एक्चुअली अमित जी करने वाले थे उत्सव में।
0: वेल, बच्चन साहब की सेहत अगर ठीक भी होती तो भी वो इस फिल्म में काम नहीं करते, क्योंकि सिलसिला फिल्म के बाद तो रेखा के साथ काम करने का सिलसिला खत्म हो गया था ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: वही फिल्मों की कहानियों से ज्यादा तो आजकल उनको प्रमोट करने में ध्यान दिया जाता है।
1: श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप एंड टाइम एंड अगेन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आज के डेट में ऐसी ही चीजें देखने को मिल जाती हैं यार। फॉर एग्जांपल अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म चांद मेरा दिल की अगर बात करें, स्टारिंग अनन्या पांडे एंड लक्ष्य, जिसको धर्मा प्रोडक्शंस लेकर आ रहे हैं, भाई उन्होंने रिवॉल्यूशनरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी निकाली है अपनी इस फिल्म के लिए। सो जिस दिन ये फिल्म रिलीज हो रही है, दैट इज 22nd of May को, उस दिन 5 बजे शाम के पहले अगर आप इस फिल्म की टिकट्स लेते हैं तो वो आपको मात्र 149 यानी कि 149 रुपीज में मिलेंगी। एंड उसके बाद के शो के प्राइसेस आर रुपीज 199 ओनली। माइंड यू ये प्राइसिंग रेगुलर सीट्स के लिए अवेलेबल है, विच नाउ मेक्स मी थिंक कि भाई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हर दूसरी फिल्म आज के डेट में जो आ रही है उसके कंटेंट पे अगर इतनी मेहनत कर ली होती लोगों ने तो शायद इतनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज प्रमोशंस के लिए नहीं निकालनी पड़ती। एंड वन सच मूवी टू सेट दिस एग्जाम्पल इज सैयारा। भाई उस फिल्म का कोई प्रमोशन नहीं हुआ था एज सच, लेकिन जिस हिसाब से उसके कॉन्टेंट ने लोगों के दिल में जगह बनाई इज समथिंग टू एक्चुअली टेक नोट्स फ्रॉम। व्हाट डू यू से? मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga.
1: Milci, burga. हेलो हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
1: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
1: 3 सिटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पक्का।
4: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
3: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची So, अजय देवगन और अक्षय कुमार ने जेंटलमैन्स अग्रीमेंट करते हुए मेजर बॉक्स ऑफिस क्लैश अवॉइड कर दिया है. सो बेसिकली अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है वेलकम टू द जंगल ऑन द 26th ऑफ जून, जिसके बाद 3rd ऑफ जुलाई को आने वाली थी अजय देवगन की धमाल 4. अब ऐसा अगर होता तो दोनों ही फिल्मों को प्रॉपर बॉक्स ऑफिस टाइम नहीं मिल पाता ना, इसीलिए ये मांड वाली की गई है. एंड नाउ धमाल 4 इज सेट टू रिलीज ऑन द 17th ऑफ जुलाई. सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन. चांद मेरा दिल, अनन्या पांडे और लक्ष्य स्टारर, इस फिल्म का इंतजार मैं तो बेसब्री से कर रही हूँ यार. बट CBFC ने इस फिल्म के 96 सेकंड्स ऑफ किसिंग सीन्स सेंसर कर दिए हैं. सो 10 सेकंड से ज्यादा लंबे जितने भी किसिंग सीन्स थे उनको कट कर दिया गया है. प्लस जितने भी चाइल्ड आर्टिस्ट्स हैं इस फिल्म में उनके कंसेंट फॉर्म को भी सबमिट करने की बात कही गई है. बाकी विवेक सोनी डायरेक्टोरियल ये फिल्म 18th ऑफ मई को रिलीज होने वाली है. सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन एज वेल. 29th ऑफ मे इज द डेट. नहीं, रिलीज हो रही है कोई चीज बट इट्स नॉट द फिल्म, बट फिल्म का ट्रेलर. मैं बात कर रही हूँ कॉकटेल 2 की, जिसमें शाहिद कपूर के साथ कृति सैनन और रश्मिका मंदाना लीड रोल निभाते नजर आ रहे हैं. बाकी इस फिल्म का एक म्यूजिक इवेंट किया गया जिसमें दो नए गाने रिलीज भी किए गए हैं. वन इज माशूका एंड द अदर वन इज तुझको. दोनों ही मुझे तो पर्सनली अल्टीमेट लेवल के लग रहे हैं. प्रीतम का म्यूजिक है एंड द फिल्म इज सेट टू रिलीज ऑन द 19th ऑफ जून. मिर्ची पे मैं श्रुति आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: भाई अभी दूसरी फिल्म आई नहीं लेकिन इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म की अनाउंसमेंट जरूर आ चुकी है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया की मच लव्ड हॉरर फैंटेसी फ्रेंचाइजी तुम्बाड, जिसका पार्ट टू इस साल तो नहीं अगले साल दिसंबर तक आएगा, जिसके बारे में कुछ दिनों पहले रिवील किया गया दैट पार्ट टू में आलिया भट्ट का एक एक्सटेंडेड कैमियो होने वाला है। बट नाउ रिपोर्ट्स हैव इट कि ये एक्सटेंडेड कैमियो जो है वो कॉन्टेक्स्ट सेट करेगा ताकि तुम्बाड थ्री में आलिया भट्ट को फिल्म की लीड एक्ट्रेस का दर्जा मिल सके। भाई एक तो फिल्म के डायरेक्टर सोहम सा जो इस फिल्म के लीड एक्टर भी हैं, उनके आर्ट का उनके क्राफ्ट का कोई जवाब नहीं और अब इसमें आलिया भट्ट का एडिशन। कसम से अगर आपने तुम्बाड नहीं देखी देन हॉरर जॉनरा की एक बहुत अल्टीमेट लेवल की फिल्म आप मिस कर रहे हैं, जरूर से देखिएगा एंड आई एम श्योर उसके बाद आपको तुम्बाड टू और थ्री का बेसब्री से इंतजार होगा जस्ट लाइक मी। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: श्रुति
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
2: मिर्ची में ट्यून्ड इन हूँ आप, और जब से भाई OTT आई है तब से तो कंटेंट को लेके जो खूबसूरत सी बारिश हम ऑडियंस के ऊपर होती है कि क्या ही बताऊं। और अब से कुछ दिनों पहले Amazon Prime पे एक सीरीज आई, बेसिकली उस सीरीज का सेकंड सीजन आया। आई एम टॉकिंग अबाउट सपने वर्सेस एवरीवन। और आज इस सीरीज के ही विलेन साहब, बोले तो कुकरेजा जी, बोले तो मामा, इज इन द मिर्ची स्टूडियो हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद मी। ही इज नन अदर देन विजयंत कोहली, हु इज अ मल्टीफेसेटेड एक्टर। इन्होंने अपने इमोशन से हमें रुलाया भी है, कभी हंसाया भी है, और इस सीरीज में पर्टिकुलरली ये काफी डरा रहे हैं। सो वेलकम टू द शो सर, थैंक यू सो मच कि आप हमारे मिर्ची स्टूडियो की हॉट सीट की हॉटनेस और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं।
3: थैंक यू श्रुति, थैंक यू। मुझे तो ऐसा लग रहा है रुला देगी तो अभी शुरुआत में ही, मतलब इतने मल्टी फेसेटेड और जाने क्या क्या। एनीवेज हां, गुड गुड टू हियर यार, अच्छा
2: सर,
3: लग रहा।
2: वो आपकी जेनरोसिटी है कि आप बस ऐसे बोल रहे हो, नहीं तो पूरी दुनिया जान रही है आपके बहुत सारे चेहरे देख लिए हैं लोगों ने अभी तक।
3: पीपल आर बीइंग काइंड यार दिस टाइम अराउंड। आई मीन आई एम रियली हैप्पी दैट दे हैव सीन दिस साइड आल्सो, बिकॉज़ अभी तक जो हो रहा था वो स्वीट पापा, क्यूट मामा, प्यारे भैया, नोने से चाचू, पुकी अंकल, वो सब चल रहा था। तो अभी उसको ब्रेक करने का टाइम था, सो लकीली दिस थिंग केम इन एंड हो रहा है, मतलब कहीं कुछ ठीक ही हो रहा है लग रहा है।
2: सर ऑनेस्टली दिस इज एन अंडरस्टेटमेंट दैट यू आर गिविंग कि ठीक ही हो रहा है। मेरे हिसाब से तो अव्वल हो रहा है, सुपर से भी ऊपर हो रहा है, एंड जस्ट बवाल ही मचा रहे हैं आप। सो वील कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन विद विजयंत कोहली सर अबाउट सपने वर्सेज एवरीवन एंड डेफिनेटली अबाउट हिज फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एज वेल, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। अभी के लिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पर इस कॉन्वर्सेशन को वापस कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ।
3: हाँ जी, हेलो।
4: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
4: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 3rd K 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
3: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
3: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
4: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
4: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
3: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
4: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
3: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
4: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
3: क्या
4: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं।
4: दोबारा कॉल करेंगे, आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना। हिट गाना।

0: বাবুমশাই, সাইজ ডাজন্ট ম্যাটার ইয়ার।
1: শ্রুতি শ্রুতি
2: মে তো বড়ি ফিল্মি হু।
0: এক্সকিউজ মি, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं तो मूवीज के साइज की बात कर रही हूँ यार। आप कहाँ जा रहे हो डर्टी माइंड? खैर, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं सिर्फ 20 मिनट मांगूंगी आपसे, क्योंकि आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ साइकोलॉजिकल थ्रिलिंग शॉर्ट मूवीज की बात कर रही हूँ जो 20 मिनट से भी कम ड्यूरेशन के हैं। इन द लिस्ट सबसे पहले वील टॉक अबाउट कृति, नंबर दो पे हम बात करेंगे 10th रेस की, नंबर तीन पे राह, नंबर चार पे रश्क एंड नंबर पांच पे इलायची। सो शुरू करते हैं कृति से, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2016, डायरेक्टेड बाय शिरीष कुंदर, और इस फिल्म में मनोज बाजपेयी, राधिका आप्टे एंड नेहा शर्मा लीड रोल्स में हैं। टॉकिंग अबाउट द मूवी, अगर मैं कहूं कि आपके थॉट्स ही आपको रिसीव करते हैं तो सो बेसिकली ये फिल्म आपको एक चीज पे विश्वास करने पे मजबूर कर देगी जब तक इसका अंत नहीं देखोगे आप। सो साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर अगर पसंद है आपको, देन बकल अप बाबू मोशाय, क्योंकि ये फिल्म आपको अलग लेवल पे लेकर जाएगी। वेल, मेरी इस लिस्ट में और भी चार ऐसी फिल्मों की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: 20 मिनट।
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: मैं तो आपके ही 20 मिनट की बात कर रही हूँ यार बाबू मोशराय, क्योंकि आपको ही आजकल टाइम नहीं होता ना कि आप अपने एंटरटेनमेंट का ध्यान रख पाए। तो बस पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू आज कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलिंग शॉर्ट फिल्मों की बात कर रही हूँ जो आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर डालना चाहिए। लिस्ट में सबसे पहले वी डिस्कस्ड अबाउट द मूवी कृति। अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट 10th रेस। भाई साहब, ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 2011, डायरेक्टेड बाय गौरव मिश्रा, जिसमें राहुल बग्गा, नीरज शर्मा, उल्हास और पंकज त्रिपाठी लीड रोल्स में हैं। इट इज अ ग्रिपिंग टेल ऑफ हाई स्टेक्स रिस्क, जिसमें रेजर शार्प स्ट्रेटजी है, एस्केलेटिंग क्राइम है, और इस सब को लीड कर रहे हैं पंकज त्रिपाठी। सो बेसिकली मूवी में चार लोगों का परफेक्ट क्राइम अटेम्प्ट करने का प्लान है, और इनका ये फ्लॉलेस प्लान तब तक मस्त होता है जब तक ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाता। अ मस्ट वॉच एज ऑफ योर सीट थ्रिलर जो आपको अपनी लिस्ट में ऐड जरूर करना चाहिए। मूविंग ऑन नंबर 3 पे लेट्स टॉक अबाउट राह। वेल, दिस मूवी रिलीज इन द ईयर 2015, डायरेक्टेड बाय प्रतीक पयोधी, और इस मूवी में स्वर्णिमा तिलांग और ऋषि वर्मा लीड रोल्स में हैं। सो बेसिकली दिस मूवी फॉलोज टू स्ट्रेंजर्स जो एक कार राइड पे जाते हैं, और दोनों के मस्त डार्क सीक्रेट्स हैं। माइंड यू, वन ऑफ देम इज अ मर्डरर, लेकिन कौन, ये जानने के लिए आपको मूवी के अंत तक पहुंचना ही पड़ेगा। खैर, मेरी इस लिस्ट में और भी दो ऐसी ही फिल्मों की बातें बाकी है, बट इन अ वाइल, टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। श्रुति आपके साथ है।
3: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा।

0: छोटी छोटी चीजें भी बड़ा मजा दे जाती हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एक्सक्यूज मी डर्टी माइंड, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं शॉर्ट फिल्म्स की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों की, जो 20 मिनट के अंदर ही आपको अलग लेवल का मजा दे जाएंगे। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी कृति, नंबर दो पे हमने बात किया 10th रेस के बारे में, नंबर तीन पे वी टॉक्ड अबाउट राह, अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट रश्क। ये मूवी रिलीज हुई थी इन द ईयर 2020, डायरेक्टेड बाय राजीव वालिया, जिसमें भुवन अरोड़ा, पूजा भामरा, पलक पुरस्वानी एंड श्रीश शर्मा लीड रोल्स में हैं। बाकी इस फिल्म को देखने के पहले प्रिपेयर फॉर अ सीरियस माइंड गेम, हाँ, क्योंकि ये फिल्म रिवॉल्व करती है अराउंड अ बिजनेसमैन जिसके ऊपर अपनी वाइफ को मारने का इल्जाम लगा है। वेल, एज ही नरेट्स हिज वर्जन ऑफ इवेंट्स, जो सच्चाई है उसमें काफी सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आते हैं। वेल, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं नंबर पांच पे, लेट्स टॉक अबाउट द मूवी इलायची, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2015, डायरेक्टेड बाय देवशीष मखीजा, जिसमें विभा छिब्बर, निमृत कौर और दिव्येंदु शर्मा है। Well, imagine करो being stuck with someone forever and ever. So basically, ये movie एक darkly comic yet chilling tale है of a husband जो अपनी wife को अकेला छोड़ने से मना कर देता है, even after death, mind you. बाकी फिल्म में निमृत कौर की frustration is all too real and the ending, भाई साहब, unforgettable and haunting. नहीं देखी फिल्म तो अपनी वॉच लिस्ट में इसको जरूर डालना। बाकी मेरे इस लिस्ट में और भी कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलिंग शॉर्ट फिल्म ऐड करना चाहो, देन प्लीज डू दैट, MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
1: ¿Aló? ¿Aló?
2: Sir, very good evening, my bank support.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry sir, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया?

0: सर आप तो सर पूरा बताइए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया
0: सर आपने उसमें से? अभी तो कुछ कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को, कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
0: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो
0: आई एम सो सॉरी सर, सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या?
0: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
1: पागल पागल है,
0: अब तो देने पड़ेंगे सर।
1: हेलो
0: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे।
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
0: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
1: पागल के दिमाग खराब है क्या सर? पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे?
0: अब तो फंस गए सर।
1: हेलो
0: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है।
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
0: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
1: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
0: जी अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, मेरे साथ अब मूड को भी थोड़ा सूट पहनाओ और यार डांस के बीट्स पर टाई पहन के नाच लो, क्योंकि एक ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, बात हो रही है बदतमीज दिल। यार इस ट्रैक का चार्म ही ये था कि ये गाना ना सूट में भी पार्टी करवा देता था। बेनी दयाल और शेफाली अल्वारेस की वोकल्स एकदम मिस्चीफ और मस्ती मोड में थी, और प्रीतम का ग्रूव यार ऐसा कि ट्रैफिक लाइट पर भी ना शोल्डर्स हिलने लगते थे। और मजे की बात तो ये है कि ये जो गाना है यानी बदतमीज दिल फ्रॉम द एल्बम ये जवानी है दीवानी, इस गाने की कोरियोग्राफी रेमो डी सुजा ने की थी, और शायद इसीलिए इस गाने को ना बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी मिला था। सो जी हाँ, अगर आप वो हुक स्टेप कॉपी करते हो तो जी उसके पीछे एक एक्चुअल ट्रॉफी एनर्जी भी है। तो यार आप भी बताना कि बदतमीज दिल पर कभी क्यूट सा मूव किया है, टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और दोस्तों ये जो गाना है बदतमीज दिल, माने ना फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, आपके लिए बजने वाला है अभी। लेकिन यार इस एल्बम के और भी कई सारे गाने हैं जो जिसके बारे में हम बातें करेंगे, और आप भी मुझे बताना ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको हिट लगते हैं, टेल मी ऑन इंस्टा। तब तक के लिए बदतमीज दिल राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ओ चनती कुड़ी, ओ चनती कुड़ी।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: Очаните кори. Очаните кори.
1: Начускио ме. Насустио ме. Апни субха каре старт. Чустио ме. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, एक ऐसा गाना, एक ऐसे एल्बम का कि यार होली का सीजन हो या ना हो, लेकिन ये गाना बजते ही दुनिया रंगों के बैंडविड्थ पर आ जाती है। जी हाँ, बात हो रही है बलम पिचकारी की, फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। वैसे तो यार ये गाना ही इतना, मतलब इतना ज़्यादा अमेजिंग था, क्योंकि इसमें था थोड़ा कलर, थोड़ा केओस, बट फुल ऑन मस्ती। विशाल ददलानी का स्वैग और शलमली की प्लेफुल वोकल बाउंस, यार ये कॉम्बो इस गाने को ना इंस्टेंट फेस्टिवल हिट बना देती थी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि रणबीर कपूर ने बताया था कि इस गाने की शूटिंग ऑलमोस्ट 8 दिन चली थी, और धूप के साथ डांसर्स और उनकी एनर्जी लेवल यार फुल ऑन मैराथन टाइप सिचुएशन थी। तो जी हाँ, ये भी मेंशन किया था कि शूट के दौरान ना कुछ तो भांग वाली किस्से भी हुए थे। वेल, ये तो बॉलीवुड है और यहाँ गुलाल के साथ स्टोरीज भी उड़ती है। तो आप भी बताना कि आपका मोस्ट फिल्मी होली मोमेंट क्या था, और वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको भी बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल के लिए सुपर हिट एल्बम का सुपर हिट गाना बलम पिचकारी फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल,
2: देसी स्वैग और हाई एनर्जी डांस वाइब के साथ सुनो, वे आ करवा दो जी।

गाने को गाया है मीका सिंह और असीस कौर ने, म्यूजिक दिया है व्हाइट नॉइस कलेक्टिव्स ने और लिरिक्स लिखे हैं वायु ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से, विया करवा दो जी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्राई।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कभी कभार कुछ गानों में कुछ कलाकारों की एंट्री ऐसे हो जाती है कि यार कलेक्टिव रिएक्शन आ जाता है ऑडियंस से, दैट क्वीन इज हियर। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, रेखा भरद्वाज की आवाज में ये जो गाना है घगरा फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, यार इनकी आवाज़ ने वो एक ऐसी अर्थी टेक्सचर दी थी कि फुल ऑन फोक गाने को भी प्रीमियम बना दिया था। और विशाल ददलानी ने उसमें जो पंच डाला था उसके बाद प्रीतम का कंपोजिशन, मतलब यार देसी मीट्स ब्लॉकबस्टर। तो यार मज़े की बात तो ये थी कि जब लोगों ने इस गाने के बारे में, घगरा इस गाने के बारे में बस सुनी थी, तभी पता चल गया था कि माधुरी दीक्षित का ये आइटम सॉन्ग रहने वाला है। और इसके पहले लुक से ही यार ये रिपोर्ट हो चुका था कि रणबीर कपूर के साथ उनका डांस मोमेंट इस गाने में दिखाई देगा, और यही इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी, दैट द क्वीन वाज बैक विद अनदर आइटम सॉन्ग। तो जी हाँ, माधुरी दीक्षित का वो कौन सा ऐसा आइकॉनिक गाना है जो आपके लिए भी फॉरएवर नंबर वन है? मेरे लिए तो ये उनके लिस्ट में से एक तो है ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें यार माधुरी को देखते ही मतलब बस मन करता है कि देखते जाओ देखते जाओ। तो शायद इसी के वजह से ये गाना भी हिट बना था फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी। तो चलिए बजाते हैं घाघरा। लेकिन आप भी मुझे बताना विच इज योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। चल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR, और तब तक के लिए माधुरी दीक्षित का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शाम लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है 2013 के एल्बम के उस गाने की जिसके वजह से ना, मतलब सूटकेस पैक्ड हो या ना हो, दिल ऑटोमेटिकली इलाही मोड़ पे चला जाता है। जी हाँ, ये जवानी है दीवानी का गाना इलाही संग बाय अरिजीत सिंह। वैसे यार मजे की बात तो ये कि अरिजीत सिंह की ब्रीजी ओपन थ्रोटेड डिलीवरी और प्रीतम का लाइट गिटार लेड अरेंजमेंट मिलकर एक ऐसा वाइब क्रिएट करता था जैसे कि यार जिंदगी ना हाँ बोल रही हो। मतलब लिरिक्स भी अमिताभ भट्टाचार्य के एकदम सिंपल से, ऑनेस्ट से और सीधे दिल तक पहुंचने वाले। वैसे तो ये जो गाना है इलाही, इसका रिप्रीज वर्जन मोहित चौहान ने गाया था क्योंकि यार सेम जर्नी थी लेकिन अलग टेक्सचर था। तो दोनों वर्जन अगर सुनो ना तो लगता है कि यार एक ही सफर को दो नजरियों से देखा गया है। फिल्म में वैसे रणबीर कपूर के ट्रैवल मॉन्टाजेस ने भी इस ट्रैक को प्योर बैकपैक एंथम बना दिया था। मतलब जब भी ट्रैवल का मन करे ना, ये गाना दिमाग में डेफिनेटली आता है। तो चाहे हेडफोन्स पे सुन लो या फिर अपने गाड़ी में, यार ये गाना कहीं और ट्रांसपोर्ट कर ही देता है। तो चलिए सुनते हैं इस हिट एल्बम का ये अमेजिंग सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बताना वो कौन सा ऐसा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है। वो बजाते हैं यहाँ पर, फिलहाल सुनते हैं इलाही फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट

0: Mirci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: सुमन जी, गुड इवनिंग. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है.
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे?
3: मैं होल्ड कर रहा हूँ.
2: हाँ जी, हेलो.
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है.
3: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3K/5/14A, 1st floor. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
2: मेरा सनशाइन कैंसर है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है.
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है.
3: मैडम ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
2: बी पॉजिटिव. दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा. और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो.
3: वही तो मैं आपको. अरे मैडम,
2: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल
3: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं. अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा. आपका मुर्गा बन गया. रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है. आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं.
3: दोबारा कॉल करेंगे. आप क्या वक्त लिया? आप बड़े अच्छे हैं. मैं अभी आपको कॉल बैक.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और एक रियल वर्ल्ड वाइब ये होता है कि कभी मार्केट तो अपबीट होता है या कभी थोड़ा कॉशियस। हेडलाइंस तो चेंज होती रहती है, पॉलिसीज शिफ्ट होती रहती है, और इकोनॉमिक्स का मूड कभी क्लियर स्काई, कभी क्लाउडी तो कभी स्नो। ऐसे मिक्स मार्केट में ना लोग भी पॉज ले लेते हैं, सोचते हैं कि क्या यही सही टाइम है घर खरीदने का, वेट करें या मूव करें। पर हर चेंजिंग इकोनॉमी के बीच अपॉर्चुनिटीज भी क्वाइटली शेप हो रही होती है। स्मार्ट डिसीजंस पैनिक से नहीं, क्लैरिटी से लिए जाते हैं, और इसी क्लैरिटी के बारे में आज बात करेंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बी।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: वाओ।
1: इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधू और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपरहिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

दोस्तों मिड वीक का भी ना एक अजीब ही फेज होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब मंडे का शौक निकल जाता है ना और फ्राइडे की एक्साइटमेंट आई नहीं होती है, तब ये जो मिड वीक है ना यानी वेंसडे, ये बिल्कुल मूवी का इंटरवल जैसे लगता है। मतलब स्टोरी तो चल रही है पर क्लाइमैक्स अभी दूर है। और इसी वक्त ना इंसान सबसे ज़्यादा चाय पीता है और सबसे ज़्यादा बस वीकेंड आ जाए यही बोलता रहता है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार इसी मिड वीक में ना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आइडियाज़ भी आते हैं। तो आप भी बताना दोस्तों कि आपका मिड वीक मोटिवेशन क्या है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मिड वीक में आपके मूड को अप करने के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

यार जब जब श्रेया घोषाल और सोनू निगम साथ आया है ना, तब तब धमाका ही हुआ है म्यूजिक में। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसे कितने गाने हैं जो श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने साथ में गाए हैं, फिर चाहे वो यार एक दूसरे के गानों में एकदम छोटा सा पार्ट ही गाना ही क्यों ना हो, बट एवरी सॉन्ग हैज़ बिन मैजिकल। तो चलिए बात करते हैं आज कुछ अमेजिंग गानों के बारे में जो इन दोनों ने गाए हैं। एंड द फर्स्ट वन इन माई लिस्ट इज यार दिल डूबा दिल डूबा, जो कि एक मतलब आई वोंट से इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, बट इट्स दैट वन अमेजिंग सॉन्ग जिसके मतलब बस मन करता है कि गाने को सुनते ही जाओ सुनते ही जाओ। एंड यू कैन नॉट स्टॉप ग्रूविंग ऑन दिस सॉन्ग, स्पेशली अक्षय कुमार का जो हुक स्टेप है दिल डूबा गाने का। तो चलिए आज यही गाना प्ले करते हैं, एंड आई एम गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट श्रेया एंड सोनू सॉन्ग। बट आप ही मुझे बता सकते हो कि आपका इस डुएट का फेवरेट गाना कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। तब तक के लिए सुनते हैं दिल डूबा राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Gambana. Burka, burka. Na pierdva la burka.
1: Milci, burka. हेलो हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
1: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
1: 3 सिटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

श्रेया घोषाल और सोनू निगम जैसी सुरीली आवाज जब साथ में आती है तो म्यूजिक रोमांटिक मास्टरपीस तो बनेगा ही। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और बातें हो रही है कि यार श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने जब भी साथ में गाना गाया है तो खूबसूरती वाले गाने, मतलब ऐसे गाने बजे हैं, ऐसे गाने हमको सुनने मिले हैं जो यार मतलब उनको कैटेगराइज ही मास्टरपीस में कर देना चाहिए। तो एक जो रोमांटिक मेलोडी है जो इन दोनों ने साथ में गाई है, दैट इज़ फ्रॉम द मूवी कुर्बान, अगेन शुक्र अल्लाह इज़ द सॉन्ग। यार इतना ब्यूटीफुल गाना है एंड यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन एनी अदर सिंगर सिंगिंग दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। स्पेशली दोनों की जो जुगलबंदी इस गाने में, दैट इज़ एब्सोल्युटली मार्वलस। तो चलिए सुनते हैं इन दोनों का शुक्र अल्लाह ये गाना फ्रॉम द मूवी कुर्बान। एंड आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट वन फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स विच इज संग बाय श्रेया घोषाल एंड सोनू निगम। टेल मी ऑन RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए शुक्र अल्लाह, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

एक दूसरे के गाने में एक छोटा सा कैमियो भी ना मैजिकल बन जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है श्रेया घोषाल और सोनू निगम के बारे में। वैसे तो यार ये जो गाना है जिसके बारे में आपको बताने वाली हूँ, दैट सॉन्ग इज एंटायरली संग बाय सोनू निगम, बट एक छोटा सा पार्ट इसमें श्रेया घोषाल का है। एंड वी जस्ट कैन नॉट इमेजिन एनीबडी एल्स सिंगिंग दैट वन स्मॉल पार्ट, क्योंकि यार इन दोनों का जो आवाज़ है वो, मतलब जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस इसको मिल जाता है, इट क्रिएट्स अ रोमांटिक मेलोडी। मतलब और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। येस, दैट सॉन्ग इज़ फ्रॉम ओम शांति ओ मैं अगर कहूँ। तो चलिए सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में मैं अगर कहूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी इन दोनों का कोई गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। तब तक के लिए ओम शांति ओम का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शाम वाले सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका वंस अगेन मंडे की इस खूबसूरत शाम में, जहां यार रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट आ रहे हैं सोनू और श्रेया के धमाकेदार गानों की। लेकिन यार एक जो रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, दैट इज़ नॉट जस्ट सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल, जस्ट देयर डू इट, बट यार इसमें ऑलमोस्ट 6 सिंगर्स हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स। क्योंकि ये गाना पहले तो यार इश्क पे बनाया गया है, 6 सिंगर्स इस गाने में हैं और ये जो गाना है बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन है। मतलब ना सिर्फ ये ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन है, इस कॉम्पोजिशन को एक कवाली स्टाइल में गाया गया है बट एक मॉडर्न ट्विस्ट भी दिया गया है। मतलब सोचिए अगर 6 फ्लेवर्स एक ही बिरयानी में आ जाए तो हो क्या मज़ा आ जाए। तो वैसा ही एक ही गाने में 6 सिंगर जैसे कि सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला, शान, साधना सरगम, सुचेता भट्टाचार्य, इतने सारे सिंगर्स एक साथ थे, प्लस एडिशन शंकर महादेवन भी थे एज पार्ट ऑफ कोरस जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है। जी हाँ, बात हो रही है सलामे इश्क गाने की, उसका टाइटल ट्रैक की बात हो रही है जो मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, क्योंकि ये गाना रिक्वेस्ट किया है कृति ने, हु इज फ्रॉम जर्सी सिटी। तो चलिए कृति के लिए प्ले करते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल का और भी बहुत सारे सिंगर्स का ये जो ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग है सलामे इश्क, टाइटल ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट सोनू एंड श्रेया सॉन्ग, टेल मी ऑन इंस्टा एट आरजी मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सलामे इश्क का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शाम दा लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और बात हो रही है बॉलीवुड के म्यूजिक इंडस्ट्री की धमाकेदार जोड़ी की। जी हां, श्रेया घोषाल और सोनू निगम इज वन दैट फेवरेट जोड़ी ऑफ आर्स, ये जिनके गाने ना, जो डुएट सॉन्ग्स स्पेशली, बस सुनने का ही मन करता रहता है। एंड वन रिक्वेस्ट जो आप ही से आई है, इट्स फ्रॉम प्रणीता, और प्रणीता रहती है एडिसन में, एंड शी हैज़ रिक्वेस्टेड दिस सॉन्ग पीयू बोले फ्रॉम द मूवी परिणीता, जो 2005 में रिलीज हुई थी। और प्रणीता को ये मूवी इसलिए पसंद है क्योंकि परिणीता साउंड्स वेरी वेरी क्लोज टू प्रणीता, और उसको लगता था कि ये परिणीता है ही नहीं, ये प्रणीता नाम की मूवी है, इसलिए ये जो गाना है पीयू बोले इस मूवी का, इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे एक खास बात इस गाने की ये है कि ये गाना जब शूट किया गया था तो एक सिंगल शॉट में पूरा गाना शूट किया गया था। जी हाँ, कोलकाता स्टाइल हवेली सेट थी जिसमें विद्या बालन थी, और उनका जो लुक था मीना कुमारी से इंस्पायर्ड था। सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग कंपोज्ड बाय शंतनु मोइत्रा एंड संग बाय नन अदर देन श्रेया घोषाल एंड सोनू निगम। तो चलिए सुनते हैं पीयू बोले फ्रॉम परिणीता। और दोस्तों, अगर आपके भी कोई फेवरेट सॉन्ग्स है फ्रॉम दिस धमाकेदार जोड़ी श्रेया घोषाल एंड सोनू निगम, टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए परिणीता का You bully, right here on Mirchi, it's hot.

0: Milci.
1: Iskra bana, puska bana, saka bana.
2: Rabana.
1: Burka, burka. Na vjet bala burka.
2: Milci, burka.
3: Hello? Hello?
4: Sir, very good evening, man. Thanks a lot.
3: हाँ बोलिए
4: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात है
4: सर, I'm so sorry, पूरा बताइए
3: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
4: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
3: पागल पागल है क्या?
4: अब तो देने पड़ेंगे सर.
3: हेलो.
4: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
3: कौन बोल रहा है? विपिन.

0: Nej, nej, sen så tar de väck med Anna Pricka, bänka kanna kanna Pricka. Väck pässet in i Pricka.
1: Jag bara lägger den här
0: för att väcka den.
1: हेलो
2: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया.
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अभी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं? हाँ
2: जी. अरे सर, रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट,
4: इट्स पटाक.
3: मिर्ची फ्रेश माल.
5: रोमांटिक फील्स और सोलफुल मेलोडी के लिए सुनो खासियत

0: इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: दोस्तों, कभी कभी कुछ गाने ना उसके म्यूजिक की वजह से पॉपुलर हो जाते हैं, कभी कभी कुछ गाने उसके सिंगर्स की वजह से, और कभी कभी कुछ उसके पिक्चराइजेशन की वजह से। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज बातें हो रही है बॉलीवुड के म्यूजिक डुओ, वन ऑफ द मोस्ट हिट म्यूजिक डुओ श्रेया घोषाल और सोनू निगम के गानों के बारे में। और एक बहुत ही खूबसूरत गाने की रिक्वेस्ट आई है, अमित जी जो कि रहते हैं एडिसन में, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ये बहुत ही खूबसूरत गाना फ्रॉम द मूवी वजीर तेरे बिन। जी हाँ, ये गाना फिर एक बार शंतनु मोइत्रा ने कंपोज किया है, जिन्होंने परिणीता वाला गाना भी कंपोज किया था, पीयू बोले। और यार ये जो गाना है इसमें मतलब म्यूजिक तो अमेजिंग है ही, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ भी अमेजिंग है, लेकिन यार जिस तरह से ये गाना फरमाया गया है ना, मतलब हर एक जो इस गाने का फ्रेम है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सॉफ्ट टोन्ड, वॉर्म और एक पोएटिक फील देता है। जैसे कि मान लो किसी मेमोरी में से निकाला गया हो ये पूरा गाना, और हर एक फ्रेम इसका एक पेंटिंग जैसा दिखता है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब है इस गाने का। तेरे बिन सुनते हैं अमित जी की रिक्वेस्ट पर फ्रॉम द मूवी वजीर, यार ऑफ कोर्स सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों, आपका भी कोई फेवरेट गाना है सोनू निगम और श्रेया घोषाल का तो मुझे जल्दी से बताइए, टेल मी ऑन RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI जो है मेरा इंस्टाग्राम ID। और फिलहाल सुनते हैं वजीर का ये खूबसूरत गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों आज का ऑडियंस सिंपल नहीं है, ट्रेलर देखते ही रिव्यू रेडी होता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और इसीलिए आज बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है एक्सपेक्टेशन वर्सेस डिलीवरी। मतलब हमने देखा है बिग बजट होने से फिल्म हिट नहीं होने वाली या फिर छोटी फिल्म भी फ्लॉप नहीं होने वाली। ऑडियंस तो अब स्टोरी देखते हैं, ऑथेंटिसिटी फील करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं इज इट वर्थ माई टाइम टू गो टू द थिएटर और नॉट। और इसलिए चाहे कितनी भी बड़ी मूवी हो, कितने भी बड़े नाम हो, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, सिर्फ बड़ा मत बनाओ, दिल तक पहुंचाओ, यही ऑडियंस का कहना है। तो दोस्तों आप भी बताना कि आपको क्या लगता है बॉलीवुड को अब क्या इंप्रूव करना चाहिए, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, कास्टिंग या मार्केटिंग। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शाम दालक सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @ RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले।